सुप्रभात, मीडियम वेव 483 दशमलव 1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की तिथि 27, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 और 38 सेकंड हो रहे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेब 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय आइए सुनते हैं चिंतन।
1: राष्ट्र के प्रति समर्पित चेतना राष्ट्रीयता कहलाती है। भारत राष्ट्र है और भारतीयता हमारी राष्ट्रीयता। इस राष्ट्रीयता में नागरिकता, सांस्कृतिक निष्ठा एवं भौगोलिक ऐतिहासिक भावनात्मक एकता की समग्र भावना सन्निहित होती है। यदि हम भारतीय हैं तो हमें अपनी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव बोध का होना स्वाभाविक अनिवार्यता है। खंडों में नहीं, एकात्मता किंबा समग्रता में होता है। ये गौरव बोध राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, जिसके प्रति निष्ठावान होना राष्ट्रीयता का धर्म होता है। राष्ट्र एक भूखंड पर बसा होता है, जिसे सुरक्षित रखना राष्ट्रीयता का कर्म होता है। राष्ट्र के लिए जनता का एकताबद्ध रहना राष्ट्रीयता का मर्म होता है। राष्ट्रीयता वो कस्तूरी है जो अपने नागरिकों की सांसों में संस्कृति की सुरभि खोलती है। राष्ट्रीयता अपने नागरिकों के प्राण मन में बोलती है। जिस प्रकार सितार के हर तार से एक ही सुर लय से संबद्ध झंकृतियां छहरती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीयता अलग अलग गोत्रों और वैचारिक खेमों में बटे अनेक लोगों के रग रग में एकल आंतरिक सांस्कृतिक एकता का संचार करती है। राष्ट्रीयता अपने नागरिकों की चिंतन दृष्टि पर सहज नैसर्गिक अधिकार रखती है। जहां एकल राष्ट्रीयता होगी, वहां एक जन और एक संस्कृति की भावना भी अपनी संपूर्ण सुदृढ़ता के साथ होती है। जिस प्रकार हमारे पैर 4 कदम आगे और हाथ 6 डेग पीछे नहीं हो सकते, उसी प्रकार जहां राष्ट्रीयता होती है वहां राष्ट्रीय संस्कृति

0: तथा राष्ट्रीय जन भी साथ साथ होते हैं। जन सामान्य के आचार विचार से सुसंबद्ध राष्ट्रीय जन और राष्ट्रीय भाषा साहित्य के सुसंस्कारों से परिपुष्ट संस्कृति के बिना राष्ट्रीयता कोई अस्मिता नहीं रखती। राष्ट्रीयता अपनी जीभ का स्वाद बिगाड़े बगैर भूत वर्तमान एवं भविष्य के त्रिफला चूर्ण को चखती है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की रचनाएं राष्ट्रीयता का ओज बांचती हैं। कुमार संभवम का कालिदास राष्ट्रीयता का श्रृंगार चहराता है। हर राष्ट्रवादी आदमी राष्ट्रीयता का गीत गाता है। सूरदास के सूर सागर के पद राष्ट्रीयता का वात्सल्य बिखेरते हैं। जयदेव के गीतों में वर्णित राधा वल्लभ कृष्ण राष्ट्रीयता की मुरली ठेरते हैं। राष्ट्रीयता सदाचार पर हंसती और कदाचार पर रोती है। राष्ट्रीयता निराश की मरुभूमि में भी आशावाद का ओएसिस बोती है। राष्ट्रीयता त्यागने में नहीं आत्मसात करने में बड़प्पन पाती है। राष्ट्रीयता अपने राष्ट्रीय परिवेश को नफरत फेंक कर प्यार करने की कला सिखाती है। कर्पूर की गंध की तरह उड़ती नहीं है राष्ट्रीयता, ये पकवान में मिठास की तरह रसती बसती है। अनुशासन का घोड़ा जब भी भड़कता दिखता है राष्ट्रीयता मुश्तैदी के साथ लगाम कसती है। बेची या गिरवी रखी नहीं जा सकती है राष्ट्रीयता, इसे तलाक देना भी बच्चों का खेल नहीं है। राष्ट्र यद्यपि देश का ही पर्याय होता है किंतु इन दो समानार्थक शब्दों की किंचित क्वचित विभिन्नताओं में कोई मेल नहीं है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत ब्रह्मवाद की तरह राष्ट्रीयता का दर्शन भी अद्वैत भावना पर आधारित होता है। हवाएं राष्ट्र के लिए बहती हैं, पहाड़ राष्ट्र का मस्तक ऊंचा रखते हैं, झरने राष्ट्र की गतिशीलता को प्रकट करते हैं, हीरे मणिमाणिक्यों से भरा भूगर्भ राष्ट्र को महिमा मंडित करता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अतः राष्ट्रीय सत्य के सामने शेष सारे सत्य न्यून हो जाते हैं। राष्ट्रीयता अपने नागरिकों से एकांत निष्ठा की अपेक्षा रखती है। धर्म जाति क्षेत्र गोत्र रंग और लिंग आदि की सारी भेदभावनाएं राष्ट्रीय चेतना के महासिंधु में तिरोहित हो जाती। वेदों ने भी इसी तथ्य को प्रमाणित किया है कि राष्ट्रीयता का सम्मान परम सत्ता का सम्मान होता है। राष्ट्रीयता का आह्वान व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर का आह्वान होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचन स्वर विजय कुमार सिन्हा का था। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है अब कृषि चर्चा कार्यक्रम में। आज आइए सुनते हैं वार्ता, विषय है पपीते की खेती।
2: पपीता दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से खेती किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। इसका वनस्पति भाग जो होता है वो औषधीय होता है। इसके फल बीज और पत्तियां सब कुछ एक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। डेंगू और मधुमेह जैसी बीमारियों में पपीता के फल और पत्तियों का प्रयोग महत्वपूर्ण पाया गया है। पपीता की खेती के लिए ऐसी जलवायु होनी चाहिए जो उष्णकटिबंधीय हो। इसके लिए 21 से 33 डिग्री सेल्सियस के साथ शुष्क गर्म धूप जलवायु पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पपीता की खेती वैसी मिट्टी में की जाती है जो कि कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो, लेकिन वो जल निकास वाली होनी चाहिए क्योंकि यदि पानी खेत में लगता है तो इससे नुकसान होने की आशंका होती है, रोग ज़्यादा होते हैं। पपीता की उन्नत किस्मों में पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ, पूसा जाइंट, CO1, CO2, CO4, CO5 और CO6 प्रमुख हैं। कुछ ऐसी भी किस्में होती हैं जिसमें केवल मादा फूल ही लगते हैं, जिसमें सुरजा, अर्का प्रभात, कुरगहनी ड्यू, ताइवान, सनराइज सोलो, सिंटा और रेड लेडी प्रमुख हैं। पपीते का जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है यानी कि जो पौधा तैयार किया जाता है वो द्विलिंगी किस्मों के बीजों से होता है। 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगते हैं। इससे बीज जो तैयार होते हैं उनसे 1 हेक्टेयर खेत की बुआई होती है। इसमें नर्सरी में जो बीज आप डालेंगे पौधा तैयार करने के लिए तो नर्सरी के बेड का आकार 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। क्यारी तैयार करने के बाद बुआई से 1 महीने पहले मिट्टी को 5% फॉर्मल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए ताकि डैम्पिंग ऑफ बीमारी से बचा जा सके।

अरियों में बीजों की बुआई से पहले थीरम या ट्राइकोडर्मा बीरिडी से उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो है रोग होने की आशंका कम हो जाती है। खेत की तैयारी के बारे में आपको जानकारी दे दें कि रोपाई के पहले जल निकास वाली जो भूमि होगी उसमें ठीक ढंग से जुताई कर लेते हैं। उसके बाद 60 सेंटीमीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर गहरी और 60 सेंटीमीटर जो चौड़ी है

0: बाद 60 सेंटीमीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर गहरी और 60 सेंटीमीटर जो चौड़ी है वो गड्ढे बना लेते हैं। फिर एक गड्ढे में 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली और 1 किलोग्राम बोन मील जो है वो डाल देते हैं। उससे भराई की जाती है और फिर उसमें पौधे की रोपाई की जाती है। जब पौधे कुछ बड़े होते हैं तो देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कीड़े और रोग जो है वो लगने की आशंका होती है। यदि आपके खेत में कीड़े पहुंच रहे हैं तो विषाणु जनित रोग जरूर होगा। पपीता के लिए आप जो उसके साथ फसल लगाते हैं उसमें गोभी, फूल गोभी, मूली और फलियां वाली जो फसल है ठीक रहती है। हालांकि पपीता, तंबाकू अंतराल भी सबसे अच्छा रहता है, वो भी बो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जो पपीता के बाग में आप नहीं लगावें, क्योंकि टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी यदि आप लेते हैं तो इसमें विषाणु रोग जब होगा तो पपीता में भी हो जाएगा और इससे नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। तो ध्यान रखें कि इन फसलों को उसके साथ नहीं लें। कई तरह की बीमारियां जो है पपीता में हो जाती हैं, जिनमें पपीता रिंग स्पॉट वायरस और पपीता लीफ कर्ल वायरस महत्वपूर्ण है। इससे दोनों रोग में आप देखते हैं होंगे कि पपीता की पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे पड़ने के कारण जो है पौधे सूखने लगते हैं और फल ठीक ढंग से नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि खेत में कीड़ों को आने से रोका जाए, क्योंकि कीड़े जो होते हैं वे ही वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। आपके पौधे पर, पेड़ पर वही कीड़े पहुंचाते हैं। इसलिए कीड़ों को खेत में आने से रोकने के लिए जो भी उपाय हो उन्हें आप जरूर करें। कुछ और भी फफूंद जनित भी रोग लगते हैं, तो उसके लिए यदि आप बीजों का उपचार करेंगे, खेत का उपचार जो है फफूंदनाशी से करेंगे तो ठीक होगा। एंथ्रेक्नोज रोग भी लग जाता है, भंडारण के समय भी लगता है। फलों की तुड़ाई करने पर भी आपको ध्यान देना है कि कब आप तोड़ेंगे और नज़दीक के बाजार में भेजेंगे। तो जब पौधे आपके फल उसके जो है परिपक्व हो जाएं, उस समय आप फलों की तुड़ाई करें और बाजार में भेजें।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जाँच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा।

0: श्री शाह ने अधिकारियों को 5 JJ क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1,000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं सुनिए वंदना, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। आइए करते हैं शुरुआत एक देशवंदना के साथ।

14 वें स्वर में इस देशवंदना को सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं कबीरदास की एक भक्ति रचना। कलाकार हैं गोविंद प्रसाद जयपुर वाले।

अंजन चटर्जी जी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गुरु नानक देव जी की ये रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। करूं प्रभु से यही प्रार्थना, रखना सदा दया का हाथ, जब भी पुकारूं तेरा नाम, देना हर घड़ी मेरा साथ। श्रोताओं आइए सुनते हैं एक पारंपरिक भक्ति रचना पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे ये प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

सुरेश वाडकर के गाए इस पारंपरिक भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी पटना है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर उत्तरा कीलकर का है।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ।

वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर उत्तरा केलकर का था। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडिया वेब 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर उषा कुमारी से ली गई एक भेंटवार्ता। विषय है प्रसव पूर्व महिलाओं के सेहत की देखभाल। आपसे बातचीत कर रही हैं अजिता चौबे।
1: श्रोताओं स्वास्थ्य चर्चा के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर उषा कुमारी जो कि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे श्रोताओं के बीच।
2: धन्यवाद।
1: आज हम आपसे जानना चाहेंगे प्रसव पूर्व महिलाओं की सेहत की देखभाल, इस विषय के बारे में।
2: ये आप जान रही हैं कि प्रसव जो है वो बहुत ही सुंदर और डेलिकेट जर्नी है हर महिलाओं के लिए
1: जी।
2: और इसमें जो है हम लोग का मोटो होता है कि स्वस्थ अगर माँ होगी तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे
1: जी।
2: तो स्वाभाविक है कि हम लोग का सारा फोकस महिलाओं पर होता है कि महिलाएं जब कभी मासिक रुके तो वो तुरंत आकर के नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हो, जहाँ भी महिलाएं डॉक्टर हो, उनसे मिल करके वो सबसे पहले तो अपनी जांच करावे कि वो महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो फिर वो एक अल्ट्रासाउंड हम लोग उस समय करना चाहते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन मैंने गर्भाशय के अंदर है या गर्भाशय के बाहर है। दूसरा है कि ये बच्चा लाइव है या नहीं है, और अगर लाइव बेबी है अल्ट्रासाउंड में ये करीब करीब 6 से 7 सप्ताह में पता चलता है। तो हम लोग मरीज को कुछ और जांच भी करवाते हैं। कुछ और जांच जो होता है वो ब्लड से संबंधित जांच होता है, जिससे कि हम लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड का प्रॉब्लम है, अगर है किसी तरह का कोई क्रॉनिक इलनेस है या महिलाओं में खून की कमी है, ये सभी जांच हम लोग चाहते हैं कि समय पर आवे महिला और करवावे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे रिलेटेड फिर उसका हम लोग निदान करते हैं। और शुरू के 3 महीने में पूरे प्रेगनेंसी को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। शुरू का 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, सेकंड जो है ना अप टू 28 वीक्स का जो होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है, और थर्ड ट्राइमेस्टर है 40 वीक्स। पूरा प्रेगनेंसी 40

0: सप्ताह का होता है। तो पहला 3 महीने में हम लोग फोलिक एसिड मरीज को देना चाहते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं ताकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो।
1: जी
0: उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर पेशेंट को 11 to 13 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड हम लोग चाहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करके ये डिटेक्ट करे कि किसी तरह का कंजनाइटल एनोमलीज, क्रॉनिक क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। अगर कुछ है तो उस समय हम लोग उसको टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी। तो 3 महीने के बाद आयरन फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोली कम से कम 1000 मिलीग्राम हम लोग देना चाहेंगे उस समय मरीज को। और टेटनस की 2 टीका
1: जी
0: जरूर मरीज को हम एडवाइस करेंगे कि वो समय पर आकर के नियर बाई स्वास्थ्य केंद्र में जा करके वो ले। प्राइवेट में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा लेट टेटनस का टीका देते हैं, वो देते हैं करीब 22-24 वीक्स में। और सेकेंड डोज जो है वो टेटनस के जगह पर हम लोग टीडैप देते हैं जिसमें डिप्थेरिया पर्टुसिस भी इंक्लूडेड है। और आइडियली कहा जाता है ये टीका जो है 28 सप्ताह के बाद देने से बच्चे में भी प्रोटेक्शन होता है तो ये देना चाहिए। और एक और वैक्सीन हम लोग देना चाहते हैं उस समय इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन।
1: जी
0: और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देने से शुरू के जो 6 महीने का लाइफ बच्चे का होता है जिस समय बच्चा बहुत वनरेबल होता है डिलीवरी के बाद वह उस समय फ्लू ना हो उसके बचाव के लिए दिया जाता है। ये टीका हम लोग टीडैप के साथ भी दे सकते हैं एक ही समय में अगर मरीज चाहे तो 7 महीने के बाद आकर के दोनों टीका ले। लेकिन दोनों टेटभैक के बीच का अंतराल जो है वो 4 to 6 वीक्स ही होना चाहिए।
1: जी
0: और ऐसे तो WHO कहता है कि आप 8 एंटीनेटल विजिट मतलब प्रसव पूर्व 8 बार डॉक्टर से जाके सलाह लें। लेकिन हम लोग जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या जो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक चेकअप होना चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मंथली होना चाहिए और अप टू 28 वीक्स, देन एवरी फोर्टनाइटली अप टू 36 वीक्स मतलब 15-15 दिन पर मरीज आकर सलाह ले और वीकली अप टू डिलीवरी।
1: मतलब प्रसव से पूर्व गर्भावस्था के दौरान ये एंटीनेटल चेकअप्स एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के
0: जरूरी
1: लिए
0: है।
1: बहुत आवश्यक
0: और
1: है।
0: इसमें डाइट की भी भूमिका बहुत अहम है
1: जी
0: क्योंकि बच्चे के लिए भी कैलोरी चाहिए तो 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसके लिए चूंकि गरीब तबके से ज्यादा मरीज आती हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि आप जो है सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स सीजनल लीजिए, उसके बाद आप दाल लीजिए, अंडा लीजिए और जो आपके रीच में है खाना उसे खाइए, हेल्दी फूड्स लीजिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे।
1: मतलब स्वस्थ गर्भावस्था के लिए स्वस्थ भोजन भी उतना ही आवश्यक
0: हाँ
1: है।
0: या
1: डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रसव पूर्व महिलाओं की सेहत की देखभाल इस विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उषा कुमार से ली गई भेंट वार्ता, विषय था प्रसव पूर्व महिलाओं के सेहत की देखभाल। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया 683 से जुड़े एक मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोता लीजिए सुनिए, अब प्रस्तुत है आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता सुनेंगे हमारे केंद्र से आज आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले स्टेडियम लीड्स में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। प्रसारण समय होगा शाम 6:30 से। मैच के आंखों देखा हाल का शेष भाग क्रमशः आप सुनेंगे हमारे केंद्र से 7:15 पर, इसके बाद 8:00 और 9:30 पर। जी हां, आप सुनेंगे आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले स्टेडियम लीड्स में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:10। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सलाम सैयद हैदर अब्बास से, सोज सुनेंगे रजिया नकवी से,

0: यस्मिन् विषये तथा कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुतप्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री EU परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोष्टा इत्यनेन सह EU अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने

के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी पटना है, मीडियम वेव 413.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। पेश है हालचाल।

शुरुआत करते हैं श्रोताओं हमारे पहले सेगमेंट इतिहास में आज का दिन से। आज ही के दिन इतिहास में कई बड़ी और दिलचस्प घटनाएं दर्ज हुई थी जिन्हें हमारी दुनिया का एक नई दिशा का माध्यम माना भी गया है। वाकई जब हम पीछे मुड़कर इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो एहसास होता है कि हर दिन अपने आप में कितना खास होता है, अनोखा होता है और हमें कितना कुछ सिखाकर वक्त जाता है। आज 17 जून सन 2026 बुधवार का दिन है। इस दिन मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। जहां श्रोताओं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1994 में संकल्प 1 पत्रांक संख्या के माध्यम से आज के दिन यानी 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण के लिए विश्व दिवस के रूप में नामित किया था।

इसके अलावा श्रोताओं बताते चलें, भारतीय इतिहास में आज का यह दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के लिए भी विशेष रूप से याद किया जाता है। आज के ही दिन सन 1858 में भारत की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों

से लड़ते हुए ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुई थी। बहरहाल श्रोताओं, बातें और भी होंगी, इस समय आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम में चलते चलते अब आइए करते हैं बात कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की, जो हमारे घर के प्यारे बड़ों और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत खास है। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं बुजुर्गों के लिए चेयर योग और अडेप्टिव योग की। अक्सर उम्र के साथ घुटनों या कमर दर्द की वजह से, इसकी समस्या से घर में हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी जमीन पर बैठ नहीं पाते, लेकिन सेहत का ख्याल रखना तो ज़रूरी है, आवश्यक है हर उम्र के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए। तो बस वो कुर्सी पर आराम से बैठकर भी हल्के स्ट्रेचेस, गहरी सांसें और प्राणायाम आदि कर सकते हैं। तो आज ही 5 मिनट अवश्य निकालें और घर के बुजुर्गों को यह आसान चेयर योग जरूर करवाने में मदद करें। बहरहाल लीजिए कार्यक्रम में एक अगला झूमता हुआ गीत।

कार्यक्रम श्रोताओं, अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा सेगमेंट आज के नुस्खे का। अच्छी सेहत और सही भोजन की बात करें तो आज का नुस्खा या हर दिन का नुस्खा बड़ा ही सिंपल सा है। खाली पेट पहले तो इच्छानुसार भरपूर पानी पिएं और सुबह खाली पेट ही भीगे हुए बादाम और अखरोट या चना फुलाया हुआ खाने की आदत डालें। यह आपके दिमाग स्वास्थ्य दोनों को दुरुस्त रखता है और एनर्जी लेवल को पूरे दिन टॉप पर रखता है। याद रखें, थोड़ा सा योग, सही खान पान ही एक लंबी और अच्छी जिंदगी की असली चाबी है। अशोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हालचाल का वक्त अब यहीं समाप्त हुआ चाहता है।

यह आकाशवाणी पटना है, लीजिए प्रस्तुत है कुछ गीत। कलाकार हैं तनु गांगुली। तो लीजिए प्रस्तुत है पहले इनकी आवाज में डॉक्टर शांति जैन का लिखा यह गीत।

गीतों का आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी पटना श्रोताओं, लीजिए एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून, जी हाँ, यानी आज 17 जून सन 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान कृपया जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0612-2222500 एवं दूसरा नंबर है 0612-4026349। फ़ोन नंबर कृपया एक बार फिर से अवश्य मिला लीजिए। पहला नंबर है 0612-2222500 और दूसरा नंबर 0612-4026349। रिकॉर्डिंग की तारीख आज यानी 17 जून सन 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सी आर व्यास का शास्त्रीय गायन में राग भैरव बहार। विलंबित रचना झूमरा ताल में और दूत रचना की बंदिश 3 ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना पंडित सी आर व्यास से शास्त्रीय गायन में राग भैरव बहार। इसके साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सूचना सुनिए। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून यानी आज दिन में दोपहर बाद 3:30 बजे से। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग होगी 17 जून 2026 यानी आज दोपहर 3:30 बजे से। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0612-2222500। दूसरा नंबर है 0612-4026349। फ़ोन नंबर कृपया एक बार फिर से मिला लीजिए 0612-2222500 और दूसरा नंबर है 0612-4026349। रिकॉर्डिंग की तारीख आज यानी 17 जून 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी पटना है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा

0: हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
6: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और NEET UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने NEET UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मोआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है, क्या ये तेहरान की जीत है?

0: nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दरियाए जमुना के आहिया के लिए तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बारे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के माबेन इत्तेफाक राय हो गया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उम्मीदवारों से नीट के दोबारा इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों से होशियार रहने को कहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर लखनऊ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के तनाजुर में तहफ्फुज फराहम किया जाए। फ्रांस के शहर एवियन में कल G7 की सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक राबता इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में लड़ाई से आलमी तजारत में रुकावट पड़ गई है और जानी नुकसान भी हुआ है। मगरबी एशिया में बहरी तजारत को लाहिक बढ़ते हुए खतरात और अदम इस्तेहकाम की इंसानी कीमत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मल्लाहों की सलामती को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है जो आलमी बहरी तजारत के जरिए सभी मुल्कों को बाहम मुंसलिक करते हैं। वजारत खारजा ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने बैन अल-अक़वामी साझेदारी कायम करने, खासतौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अल-अक़वामी साझेदारी को अतिया देने वाले और लेने वाले फरीक से आगे बढ़कर यगानगत और मुसावियाना मिल्कियत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि बैन अल-अक़वामी कानून के लिए एहतराम का फुकदान बैन अल-अक़वामी यकजहती कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है और इस पर तरजीही बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर बैन अल-अक़वामी साझेदारी में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह दिए जाने की जरूरत है। फ्रांस का शहर एवियन इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है। वहां G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस अहम मरहले में दाखिल हो रही है। भारत एक साझेदार मुल्क की हैसियत से इसमें शिरकत कर रहा है। सबकी निगाहें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आज होने वाली दोतरफा मीटिंग पर लगी हुई हैं, जिसका काफी इंतजार किया जा रहा था। ये मुलाकात सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर हो रही है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC में दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात के बाद से ये पहली बिल मुशाफा मीटिंग है। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए वसीतर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि भारत एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभरा है और आलमी बिरादरी भी पेचीदा आलमी चैलेंजों के हल के लिए अब और ज्यादा भारत का रुख कर रही है। عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کو جہت دینے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول

0: उसका सिफारती राबते का दायरा बढ़ने और मुख्तलिफ फोरमों में आलमी रहनुमाओं के साथ सरगम राबतों की अक्कासी होती है। कल सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान एक राबता इजलास में वजीर आजम ने बैन अक्वामी साझेदारी कायम करने और खास तौर पर बढ़ती हुई बाहम मुंसलिक दुनिया में एतमाद की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने हमेशा इंसानियत मुकद्दम का रवैया इख्तियार किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की जेर कमान किए गए मुख्तलिफ इकदामात से इस बात की अक्कासी भी होती है, जिनमें बैन अक्वामी शमसी इत्तेहाद कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का मखलूत इत्तेहाद, आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शामिल हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि बैन अक्वामी साझेदारी के भारत के नजरिए की बुनियाद वसुधे कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुनबा है के दायमी फलसफे में पिन्हा है। फ्रांस के शहर एवियां से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 वर्किंग इजलास में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के फायदे के लिए मुतवाजन जामे और पायदार माशी तरक्की को फाल बनाना। इसके अलावा जनाब मोदी मसनूई जहानत के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन के सदर वॉन देर लेन के साथ सेफरीकी मीटिंग करेंगे और जर्मनी के चांसलर फ्राइडरिख मर्स के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा और बरतानिया के वजराए आजम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा बातचीत की थी। जनाब मोदी ने केनिया, मिस्र और जनूबी कोरिया के सुदूर नीज जापान की वजीर आजम से भी मुलाकात की। G7 मुल्कों ने भारत समेत कई साझेदार मुल्कों के साथ सेहत और तरक्की से मुतालिक आलमी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इकदामात का ऐलान किया है। G7 के रहनुमाओं ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी के फिर से जोर पकड़ने के तनाजुर में तालमेल के साथ बैन अलाक्वामी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। भारत, मिस्र, केनिया और जनूबी कोरिया ने भी इकदामात में तेजी लाने की अपील की, जिसमें राबते में आने वाले अफराद का पता लगाना, सरहद पर निगरानी और बेदारी पैदा करना शामिल है। इन रहनुमाओं ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मदद करने का भी वादा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने तवील अरसे से जेर इल्तवा केशाऊ कसीर मकसदी बांध प्रोजेक्ट के मामले पर कल नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस प्रोजेक्ट का मकसद दरियाए जमुना का अहया करना है। एक बयान में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि मस्कूरा प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत करने से इत्तेफाक किया है। इसके बाद केशाऊ प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात का इनाकात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने वालदेन और उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि वो नीट इम्तिहानात से पहले घोटाला साजों से खबरदार रहें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम पर ये घोटाला साज कुछ चैनल चला रहे हैं, जिन पर ये दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के पर्चे फराहम करने के दावे कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग 14,000 से 25,000 रुपए तक मांग रहे हैं। एजेंसी ने वाजे किया है कि इस दोबारा इम्तिहान के लिए कोई पर्चा इफ्शा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि इस सिलसिले में फर्जी सबूत के वीडियोज भी गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें इम्तिहान से पहले की चैट्स दिखाई गई हैं। NTA ने अपने डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की वीडियो भी जारी की है, जिसमें वो मुल्क में इस ऐप तक रसाई को ब्लॉक करने की वजह बता रहे हैं। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क की विरासत के तहफ्फुज़ और फरोग के तई हुकूमत के इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।

0: जनवरी 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंजाम दी, जो सदियों से जारी एक उमंग को पूरा करने का वक्त था। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुल्क के नाम वक्फ किया गया। इस राहदारी में अजीमुशान मुजस्मों, म्यूरल्स और फन तामीर के जरिए भगवान शिव की जिंदगी और रिवायतों की अक्कासी की गई है। वाराणसी में दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। इस राहदारी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से मिलाया गया है। हमारे नामा निगार से बात करते हुए वाराणसी के एक शहरी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ राहदारी से मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को काफी सहूलत मुहैया हुई है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: इन बड़ी तब्दीलियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के साथ साथ सकाफती जड़ों को मजबूत करने की जानिब मुल्क के अहद की अक्कासी होती है।
3: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कुछ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, बिहार, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। IMD के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज चमक का इम्कान है। इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के हालात का इम्कान है। साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में आज गर्मी और हफ्स का मौसम रह सकता है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे ओडीआई में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे है और वो आज का मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खवातीन क्रिकेट में आज लीड्स के हेडिंगले में ICC खवातीन T20 आलमी कप में भारत और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम इतवार को बर्मिंघम में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त देने के बाद अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। फुटबॉल में नॉर्वे ने फीफा आलमी कप में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप एक के अपने पहले मैच में इराक पर 4-1 से जीत हासिल करके वापसी की है। अब नॉर्वे ग्रुप एक में सरफहरिस्त आ गया है। इससे पहले फ्रांस ने न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा आलमी कप 2026 के ग्रुप एक के पहले मैच में सेनेगाल को 3-1 से हराया था। इस मैच में काइलियन मैप्पे ने अपने करियर का 58वां गोल करके एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने आलमी कप में लियोनेल मेस्सी का भी अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फ्रांस के शहर एवियान में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और कई दीगर अखबारात ने NEET UG दोबारा इम्तहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी की खबर को अपने सफ़े वल पर शाये किया है। खांसी के सिरप सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत। खांसी के सिरप फरोख्त की सिर्फ लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों को इजाजत, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है कि आने वाली नस्ल के पास मुल्क में तब्दीली लाने के लिए दरकार मुनफरिद तवानाई और नया अज़्म मौजूद है। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। अमेरिका का B-52 बम्बार तैयारा परवाज के फौरन बाद गिरकर तबाह, हादसे में 8 अफराद की मौत।
3: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि आलमी बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और मल्लाहों को टकराव से वाबस्ता खतरात के

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा।

0: का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। अब तक 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,61,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हो चुका है। कैमूर और सिवान में आयोजित सहयोग शिविरों में उन्होंने कहा कि 30 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग 1 महीना पूर्ण वाला है 1-2 दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
0: इधर मुख्यमंत्री आज पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड स्थित नदियावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। वे किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आज सुबह स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर कृषि, ग्रामीण विकास और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे न्यू विधायक फ्लैट परिसर में पौधारोपण करेंगे तथा तारोगाराय पथ से अटल पथ कोलंबर तक आयोजित प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री विद्यापति भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखेंगे। राज्य सरकार ने पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित होगी, जिसमें विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभा में मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव तथा विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में वित्त आयोग की राशि के उपयोग, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, नाली, सफाई और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का भी प्रसारण किया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन 2026 के तहत आरक्षण निर्धारण से जुड़े दस्तावेज प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित यह दस्तावेज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण तय करने का वैधानिक आधार है। आयोग के अनुसार प्रपत्र 1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन 20 जून को किया जाएगा, जबकि इसकी प्रति 23 जून तक आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए हैं। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जाएंगी। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है।

0: एजेंसी ने कहा है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील, द्व्यर्थी और जाति सूचक गीतों के प्रसारण पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने गृह विभाग को पत्र भेजकर ऐसे गीतों के प्रसारण पर प्रभावी रोक लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पटना हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य में चल रही संविदा बहाली प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी है। बहाली की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रहेगी। बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार रेशो श्री उर्फ रंजन सिन्हा को पूछताछ के लिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर एसवीयू को सौंप दिया गया है। पटना स्थित निगरानी की अदालत की अनुमति के बाद उसे एसवीयू को सौंपा गया। इधर इसी मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 24 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने एसवीयू से मामले की केस डायरी और साक्ष्य तलब किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से राज्य में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मॉनसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। मॉनसून मुजफ्फरपुर के आसपास ठहर गया है, जिससे अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश की कमी के चलते पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
4: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए कृषि संबंधी विशेष कार्य योजना बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही

0: उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कटाव निरोधक कार्य समाप्त हो चुके हैं और बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण किया जा चुका है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बेतिया अंचल कार्यालय में कार्यरत

0: बैटरी और वायर शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक जमीन के अंदर प्लास्टिक में छिपा कर रखे थे। मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार कराने के आरोप में पुलिस ने नवादा से दो भिक्षकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों KLS कॉलेज परीक्षा केंद्र पर वीक्षण कार्य में तैनात थे। पूर्णिया जिले की एक अदालत ने चर्चित ताराबाड़ी दोहे हत्याकांड मामले में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के ऋषभ थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 51 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिला प्रशासन ने नेपाल से सटे भारतीय सीमा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल लीक भास्कर लिखता है, नीट में पेपर लीक नहीं हो इसलिए टेलीग्राम 22 तक बंद, नीट का पेपर ले वायुसेना का विमान पटना पहुंचा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, दो एनकाउंटर, गयाजी में 48 लाख लूट के दो आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मारी। आज अखबार लिखता है, बिहार को मिलेगी 400 ई बसों की सौगात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी का एक पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

दुनिया उसी सखी को सलाम किया अजल ने।

0: आप समाअत फरमा रहे थे, सोज़ पेश कर रही थी रज़िया नक़वी। करबला का वाक़िया हमें सब्र, इस्तक़ामत, इसार और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का दर्स देता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की क़ुरबानी ने उम्मत मुसलमा को हमेशा के लिए राह रास्त दिखा दी कि किसी भी सूरत में दीन की हकीकतों से समझौता नहीं किया जा सकता। तो आइए सामईन, अब पेश खिदमत है मकाला अनीस फातिमा उर्फ लेडी इमाम, हयात व खिदमात। मकाला निगार हैं ज़ुबैर अहमद।
1: तहरीक आज़ादी में खुसूसन रियासत बिहार में एक इंतहाई फ़ाल और सरगर्म निसाई किरदार के बतौर अपनी बेशकीमत खिदमात फराहम करने वाली अनीस फातिमा उर्फ लेडी इमाम की हयात व खिदमात के मुताले से इस नतीजे पर बआसानी पहुंचा जा सकता है कि उनकी कसीर जहती खिदमात को आज़ादी के तारीख नवीसों ने इरादतन चश्मपोशी का शिकार बनाया। उनकी सियासी, समाजी, लसानी और तालीमी कारकर्दगी बिलाशुबा उन्हें एक अजीम खातून बनाती है। वो खातून जिसे बिहार कानूनसाज असम्बली की अव्वलीन खातून मेंबर होने और जंग आज़ादी के दौरान किसी सियासी कमेटी की सरबराह के बतौर बरतानिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली बिहार की पहली खातून होने का शरफ हासिल हो, उसकी तारीखी अजमत ताक निसिया में गुम नहीं की जा सकती। 1901 में पटना वाके महल्ला पत्थर की मस्जिद के सैयद रजा करीम के घर पैदा होने वाली अनीस फातिमा को अपने मुअज्ज़ज़ इल्मी और सियासी खानवादे के सबब अपनी परवरिश परदाख्त और आगे की सियासी व इल्मी सरगर्मी के लिए इब्तदा ही से इंतहाई साजगार माहौल मुयसर आया था। उन्होंने इब्तदाई तालीम उस बादशाह नवाब रिजवी स्कूल से हासिल की जो मदरसा इस्लामिया के नाम से 1906 में उर्दू की अव्वलीन नावल निगार रशीदुन्निसा के जरिया अपने शौहर मौलवी मोहम्मद यहिया के ताउन से कायम किया गया था। 1918 में उनकी शादी अपने कजन सर अली इमाम से हुई। सर अली इमाम की दूसरी बीवी के इंतकाल के बाद उनसे आपका निकाह हुआ। इस तरह आप उनकी तीसरी बीवी हुई। अली इमाम का ताल्लुक उस खानवादे से था जो इल्म व फजल और सियासत व सरवत के लिहाज से पूरे बिहार में अपना दबदबा रखता था। आप काशिफुल हकायक के मुसन्निफ उस इमदाद इमाम

0: अभी आपने सुना उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अब रसमंजरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आइए करते हैं शुरुआत जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म से। कलाकार हैं फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल, मारिया डेलमार, फर्नांडिस और साथी।
1: ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनियर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: कार्यक्रम में लीजिए पेश है फिल्म परवाना के लिए गाया गाना किशोर कुमार की आवाज में।

हो धन लूटने का डर है घबराई हो लूटने का डर है घबराई हो सिमटी सी शर्माई।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म पेदी के लिए रोहित चौहान की आवाज में ये गीत, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है जिसे हमने लिया फिल्म ब्लैकमेल से।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेब बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे ये प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम रसमंजरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम में श्रोताओं, अगला गीत सुनने के पहले एक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे आज यानी 17 जून सन 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0612-2222500। दूसरा नंबर है 0612-4026349। फ़ोन नंबर कृपया एक बार फिर से मिला लीजिए। पहला नंबर है 0612-2222500 और दूसरा नंबर 0612-4026349। रिकॉर्डिंग की तारीख आज यानी 17 जून सन 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। लीजिए पेश है कार्यक्रम में ये अंतिम पेशकश उदित नारायण अलका याग्निक के युगल स्वर में, और फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।

0: मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म के लिए गाए उदित नारायण अलका याग्निक के इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का आज का हमारा ये कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार कल्याण। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर रामजी प्रसाद से ली गई एक भेंट वार्ता। विषय है बच्चों में श्वास से संबंधित बीमारियां और उपचार।
1: कार्यक्रम परिवार कल्याण सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रामजी प्रसाद, आप एसोसिएट

0: प्रोफेसर हैं IGIMS पटना में, साथ ही आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमारी बातचीत का विषय है बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियां और उपचार। तो इससे पहले कि हम बात करें सीधे विषय पर, डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: थैंक यू।
0: सर, सर्दी का मौसम है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें आए दिन हम देखते हैं श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो कौन कौन से कॉमन बीमारियां हैं बच्चों में श्वसन से संबंधित, थोड़ा उनके बारे में बताएं और उनके लक्षणों के बारे में, फिर हम उपचार की बात करेंगे।
1: सबसे पहले तो बच्चे का उम्र के अनुसार जो हर तरह का बीमारी होती है, खास करके 1 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं, मदर अगर मान लीजिए नॉर्मली फीडिंग करवाती है, चाहे ब्रेस्ट फीड हो या मिल्क हो या लिक्विड फीड हो,
0: जी
1: तो बच्चे जो 1 साल के नीचे होते हैं वो क्या हुआ, कभी कभी एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट मतलब कि जो पानी है सांस की नली में चला गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या लोअर रेस्पिरेटरी में। तो ऐसे में बच्चे को क्या होता है कि वो जो जाते हैं तो उसमें प्रोडक्टिव कफ बनते हैं, कब से क्या होगा फिर एलर्जी होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस होता है।
0: जी जी
1: तो मैं ऐसे मदर को जो 1 साल के बच्चे का उसको फीडिंग का खास ख्याल रखे और प्रॉपर जो है पोजीशन पर फिटिंग कराए, और बार बार बच्चे को जो है ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे मौसम जो सर्दी का मौसम उसको ढक के रखे है।
0: जी जी
1: दूसरी जो है 1 से 5 साल के जो बच्चे रहते हैं, खास करके जो नॉर्मली जो है कि हमेशा जो नीचे टहलते हैं, गिरते हैं,
0: जी
1: बैठते हैं, और खास करके जो कुछ छुए मुंह में कुछ डाल वाल लेते हैं,
0: जी
1: चाहे
0: जी
1: वो हेयर पार्टिकल हो, तो ऐसे बच्चे को जो हम 1 से 5 साल का होते हैं वैसे बच्चे को हम मदर को या पेरेंट्स को या जो भी अगल बगल है वो रिलेटिव, उसको हम यही
0: अभिभावक
1: राय देना
0: जी
1: चाहते हैं कि आप जो ऐसे बच्चों का कम से कम बार बार हाथ धोए।
0: जी जी
1: ये हाथ धोने से ये नहीं है कि आप डायरिया का काउज बनेगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है धीरे धीरे दिक्कत आएगी। जैसे इम्यून सिस्टम हो दिक्कत आएगी, ऐसे बच्चे में जो है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसको हम लोग निमोनिया कहते हैं,
0: जी
1: चाहे निमोनिया अपर रेस्पिरेटरी में हो या लोअर रेस्पिरेटरी में, होने का चांस बढ़ते हैं।
0: जी
1: और खास करके जो बच्चे को जो हम लोग देखते हैं कभी कभी माते जो है नहलाते हैं, नहलाने के क्रम में भी है जो ऊपर से नीचे जो अपन को प्रॉपर से जो पोछते नहीं है, स्पॉन्जी नहीं करवाते हैं, ऐसे में बच्चे को जो सेकेंडरी एलर्जी होता है उससे भी बच्चे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का या रेस्पिरेटरी जो है प्रॉब्लम काउज करता है। तो ऐसे माताओं के या बहनों के या किसी को भी मैं यही राय दूंगा हूँ कि आप बच्चे पर खास इस तरह ख्याल रखें।
0: जी, तो उनके नाक बंद होने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपचार हो सकता है?
1: ऐसे कंडीशन में जैसे प्रॉपर दवाई का उसका सेवन करवाया, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन जो है समय समय पर देते रहे।
0: जी, तो अब बच्चों में ये मौसम संबंधी जो बदलाव है, अभी सर्द ऋतु चल रहा है, तो ऐसे में इसका कितना प्रभाव है इस बीमारी को लेकर के?
1: देखिए दिक्कत क्या होता है कि ऐसे हम लोग खास करके सर्दियों में हम लोग क्या होता है कि हर बॉडी में कॉन्स्टिक्शन होने लगता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी में ब्लड सप्लाई का कॉन्स्टिक्शन हो या मसल का कॉन्स्टिक्शन हो या स्किन का कॉन्स्टिक्शन हो, ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो परहेज आपको यही करना है कि आप जो है प्रॉपर एंटीबायोटिक ले, प्रॉपर जो है खास करके खान पान पर ध्यान दे, जैसे गर्म पानी बच्चे को जो है प्रॉपर देते रहे, जैसे क्या कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है खास करके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉन्सिलाइटिस से सब ना हो।
0: जी, अगर कोई बच्चा इससे पीड़ित हो जाता है तो उस दौरान पेरेंट्स को किस किस स्तर पर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे समझते नहीं हैं और अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो वहाँ खास करके माताओं की भूमिका कहीं बढ़ जाती है, तो कुछ कुछ बच्चे ऐसी स्थिति में वोमिटिंग भी करते हैं, ऐसी भी टेंडेंसी होती है, नाक से पानी भी गिरता है, आँख से पानी गिरता है, तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं?
1: तो पेरेंट्स के लिए हम सुझा रहे, जैसे लक्षण जैसे आपने बताया कि नाक से पानी आ जाना,
0: जी,
1: नॉर्मली अगर नाक से पानी आ रहा है और उसको उल्टी नहीं है,
0: जी,
1: नाक से सिर्फ पानी ही आ रहा है, तो सिंपल जो आजकल कॉमन जो मेडिसिन होता है जैसे खास करके हम लोग लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन टाइप के हम लोग दवाई देते हैं,
0: जी,
1: वो भी हम लोग 5 साल के ऊपर ज़्यादा दवाई दो तो बेटर है, वो भी क्योंकि सीडेटिव होता है,
0: जी,
1: और उसको भाप ले सकते हैं नॉर्मली,
0: जी,
1: या हाँ जिसको हम लोग नेबुलाइजेशन कहते
0: जी,
1: हैं,
0: घरेलू
1: या
0: स्तर पर जो
1: घरेलू
0: प्राथमिक
1: स्तर
0: उपचार है,
1: भाप ले सकते हैं, हीट हॉट फोमेंटेशन ले सकते हैं नॉर्मल वेव में, तो जो भी नेजल डिस्चार्ज है उसको कॉमनली यदि नेजल डिस्चार्ज होता है प्रॉपरली 24 आवर के अंदर तो आप वायरल मान के चलते हैं,
0: जी
1: उसके लिए कोई रोल नहीं है मेडिसिन का, चाहे वो दवाई एंटीटसिव हो या एंटीबायोटिक हो,
0: मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं
1: नहीं।
0: है। जी, तो और रूम की जो स्थिति है, कुछ लोग घर में हीटर जला के रखते हैं, कुछ लोग ब्लोअर जला के रखते हैं सर्द के दिनों में, या कपड़ा बच्चे

0: वो जरूरत से ज्यादा भी पहनाते हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ टिप्स देंगे?
1: नहीं, हम तो ये कहेंगे अगर आप प्रॉपर से रूम रूम क्लोज किए हुए हैं, चारों तरफ से पूरा क्लोज है, तो आपको बच्चे को पूरा ऊपर से ढकने की ज़रूरत नहीं है,
0: जी
1: और सोने के समय प्रॉपर मोजा ही पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर आपको हीट वेपराइज भी करना है।
0: जी
1: आप जब शरीर का जो अपना वेपराइजेशन होता है या शरीर का जो भी हीट होता है वो बाहर निकलना भी ज़रूरी है,
0: जी जी
1: ऐसे कंडीशन में हीट जो है निकल नहीं पाते हैं,
0: जी जी
1: और अंदर क्या हुआ बच्चे का टेम्परेचर बढ़ते रहते हैं,
0: जी जी
1: तो जो अंदर से फीलिंग होगा कि आपको फीवर है बच्चे को, ऐसे कंडीशन में क्या है प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं आप कपड़ा जो है प्रॉपर एयर अंदर जाते रहे, अगर रूम ओपन है खास है खिड़की जो खुल के रखता है, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर से नीचे ढक के रखे।
0: जी जी चलते चलते सर एक आखिरी सवाल, बच्चों के लिए जो बच्चे पीड़ित हैं मतलब बीमारी से ग्रसित हैं, उनका जो खान पान है या जो कुछ भी वो सेवन करते हैं, और खास करके जिस माता के साथ वो एसोसिएट हैं, तो माता के लिए आप क्या राय देंगे?
1: नहीं देखिए, आजकल तो चूंकि फास्ट लाइफ का ज़माना हो गया, आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ प्रॉपर बच्चा जो है सुपैदा होते ही एक तो मोबाइल छू लेता है,
0: जी
1: दूसरा
0: जी
1: है कि खाने पीने में जो है खास करके फास्ट फूड जैसे मैदा का चीज़ है ये सब खाते हैं,
0: जी जी
1: तो नॉर्मली क्या होता है कि आप फास्ट फूड कुछ भी खा रहे हैं तो आपको गैस बनती है बच्चा, ये नहीं ये कि आपसे निमोनिया से रिलेटेड है, देखिए गैस बनेगी, गैस प्रॉपर क्या होता है ना कि डिस्टेंशन होता है, तो कुछ ऊपर की तरह आप जाएगा, लॉजिकली क्या होगा कि बच्चे को भूख नहीं लगेगा, बच्चे खाते नहीं है प्रॉपर, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे का इम्यून धीरे धीरे डेवलप नहीं हो पाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो डिस्टर्ब होता है बच्चे को, कभी रात को नींद नहीं आएगा प्रॉपर वे से, तो ऐसे कंडीशन में कहें कि बच्चे को खान पान में माँ बाप काफ़ी ध्यान रखे, पेरेंट्स काफ़ी ध्यान रखे, क्योंकि आपको कोई भी खाना बच्चे का एक प्रॉपर एज जो बना हुआ रहता है,
0: जी
1: ऐसे कंडीशन में अगर आप कोई भी मैदा का चीज़ खाते हैं साथ खास करके जो आजकल फास्ट फूड हो गया, वो बच्चे जो है कम से कम 10 साल के नीचे को कंप्लीट अवॉइड करे,
0: जी
1: ये दिक्कत है बच्चे में खास करके, आजकल बैड हैबिट माना गया है इसको।
0: जी जी पानी बच्चों को कितना देना चाहिए?
1: देखिए पानी तो प्रॉपर जब भी बच्चे को नीड रहता है आपको देना ही है, खाने के पहले या खाने के बाद जब भी बच्चे प्रॉपर से मांगे,
0: जी
1: ये नीड नहीं है कि आपको 24 घंटे में क्या देना है नहीं देना
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: बच्चे आके देते हैं कि पानी पीते नहीं है,
0: जी
1: लेकिन कोशिश करें कि माँ जितना भी पानी है कम से कम खाने पर प्रॉपर जो है 2-3 गिलास जो है कम से कम 2 लीटर 3 लीटर जो है प्रॉपर 24 आवर में आप
0: जी
1: देते रहे उसको।
0: निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, बच्चों में सांस से संबंधित बीमारियां और उपचार भी सह पर आप इतनी अच्छी जानकारी दिए आज इस कार्यक्रम में, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों में श्वास से संबंधित बीमारियां और उपचार, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर डॉक्टर रामजी प्रसाद से ली गई ये भेंट वार्ता। इसी के साथ कार्यक्रम परिवार कल्याण अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, श्रोताओं सूचना सुनिए। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे आज यानी 17 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी इसके लिए फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0612-2222500 और दूसरा नंबर 0612-4026349। हमारा दूरभाष नंबर एक बार फिर से कृपया मिला लीजिए, पहला नंबर 0612-2222500 और दूसरा नंबर है 0612-4026349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 यानी आज, और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy. laughs>
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोता इस समय सुन रहे हैं हमारे केंद्र से आज की पहली सभा के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं आप कार्यक्रम, आओ साथ चलें। कार्यक्रम में आज का विषय है बिहार की भौगोलिक विरासत। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ साथ चलें।
1: नमस्ते, आज का आओ साथ

श्रोताओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां नक्शे सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि कहानियां सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की। जब हम बिहार का नाम लेते हैं तो दिमाग में नालंदा, बुद्ध और सम्राट अशोक की छवि उभरती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह गौरवशाली इतिहास यहां पनपा क्यों, जब आप छिपा है यहां की मिट्टी में, यहां की नदियों के जाल में और उत्तर में खड़े उस प्रहरी में जिसे हम हिमालय कहते हैं।

आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम मिट्टी की महक बिहार की झलक समर्पित है। बिहार की समृद्ध भौगोलिक विरासत को, बिहार की भूगोल की बात हो और गंगा की चर्चा ना हो यह तो मुमकिन नहीं। गंगा यहाँ केवल एक नदी नहीं बल्कि इस राज्य की रीढ़ है। यह बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार, यहाँ हिमालय से उतरती कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे उर्वर मैदानों में से एक है। दक्षिण बिहार, यहाँ की नदियां जैसे सोन, फल्गु और पुनपुन पठारी क्षेत्रों से आती हैं। यह इलाका खनिज और कठोर चट्टानों की गवाही देता है। क्या आप जानते हैं बिहार का जो मैदानी हिस्सा है वह इतना समतल है कि मीलों तक आपको ढलान महसूस नहीं होगी। इसकी समतलता ने यहां कृषि आधारित सभ्यताओं को जन्म दिया है। कई लोग सोचते हैं कि बिहार सिर्फ एक सपाट मैदान है, लेकिन नहीं। उत्तर पश्चिम में पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। वहीं दक्षिण में मुंगेर, जमुई और गया की पहाड़ियां बहुत ही प्राचीन हैं। इतनी प्राचीन कि वे अरावली की समकालीन मानी जाती हैं। वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व हो या फिर राजगीर की पांच पहाड़ियां, बिहार का भूगोल विविधताओं से भरा है। राजगीर के गर्म जल के झरने इस बात का प्रमाण है कि हमारी धरती के भीतर आज भी कितनी भूगर्भीय ऊर्जा छुपी हुई है।

श्रोताओं, जब हम विरासत की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र ज़मीन के ऊपर दिखने वाले नज़ारों पर होती है, लेकिन बिहार की असली भौगोलिक दौलत तो इसके गर्भ में छिपी है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित रोहतास और कैमूर का पठार विंध्यन चट्टानों से बना है? ये वही चट्टाने हैं जिनका उपयोग सदियों से हमारे किलों और महलों के निर्माण में होता आया है। रोहतास के चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन ने ही बिहार के डालमिया नगर जैसे

औद्योगिक शहरों की नींव रखी थी। वहीं दूसरी ओर गया और मुंगेर का क्षेत्र खनिजों का भंडार है। गया की अभ्रक की चमक हो या जमुई में हाल ही में चर्चा में आए सोने के यानी गोल्ड के भंडार, बिहार की जमीन केवल अनाज ही नहीं बहुमूल्य धातुएं भी अपने आंचल में समेटे हुए हैं। मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियां न केवल सुंदर हैं, बल्कि वहां मिलने वाला क्वार्टजाइट हमारी निर्माण कला का आधार रहा है। अब जरा अपनी नजरें मैदानों की ओर घुमाइए। उत्तर बिहार के चौर और मन, जिसे हम ऑक्सबो या लेक्स के नाम से भी जानते हैं, केवल पानी के जमाव वाले इलाके नहीं हैं। ये हमारी भौगोलिक विरासत के जीवंत केंद्र हैं। बेगूसराय की कांवर झील को ही लीजिए, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। हर साल हजारों मील दूर साइबेरिया से पक्षी यहां मेहमान बनकर आते हैं। यह झील इस बात का सबूत है कि बिहार का भूगोल वैश्विक पारिस्थितिकी यानी ग्लोबल इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से लेकर कटिहार के गोगाबिल तक ये आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स हमारे भूजल को रिचार्ज करती हैं और जैव विविधता का उत्सव मनाती है।

जहां उत्तर में बालसुंदरी मिट्टी गन्ने और मक्के की मिठास बढ़ाती है, वहीं दक्षिण की कगारी मिट्टी और भारी ताल मिट्टी रबी की फसलों के लिए वरदान है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा के किनारे फैली कांप मिट्टी यानी एलुवियल सॉयल की परतें इतनी गहरी हैं कि वैज्ञानिकों के लिए यह भी एक शोध का विषय बनी हुई है। यह मिट्टी ही है जिसने मगध और वैशाली जैसे साम्राज्यों को आर्थिक शक्ति प्रदान की थी। श्रोताओं, बिहार की भौगोलिक विरासत जितनी समृद्ध है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। उत्तर बिहार जहां कोसी के कारण बाढ़ की विभीषिका झेलता है, वहीं दक्षिण बिहार कभी कभी सूखे की मार भी सहता है। लेकिन यही संघर्ष यहां के लोगों को जुझारू भी बनाता है। यहां की जलवायु मानसून के इशारों पर नाचती है। जून की वो पहली बारिश जब बिहार की सूखी मिट्टी पर गिरती है तो जो सौंधी खुशबू आती है वह किसी इत्र से कम नहीं। हमने अपनी इस विरासत को बचाना है, चाहे वो कांवर झील जैसे वेटलैंड्स हों या फिर हमारे लुप्त होते जा रहे पुराने आहर पाइन जल प्रबंधन प्रणाली। भूगोल बदल रहा है और इसे सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।

श्रोताओं, चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि अगली बार जब आप बिहार के किसी खेत से गुजरें या गंगा किनारे बैठें, तो महसूस कीजिएगा कि आपके पैरों के नीचे की यह मिट्टी हजारों सालों के भूवैज्ञानिक बदलावों की गवाह है। यह मिट्टी सोना उगलती है, बशर्ते हम इसकी कद्र करें।

0: आज के अवसाद चले में बस इतना ही। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया मोहम्मद शाहिद सबा ने, और अब मुझे यानी संजय किशोर और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे आज यानी 17 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0612-2222-500 और दूसरा नंबर 0612-4026-349। रिकॉर्डिंग की तारीख आज यानी 17 जून 2026 और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश। सुनते हैं आज की ये पेशकश एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।

0: ऑन एयर फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स तो आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं कश्मीर से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप ठीक है सर?
0: हाँ जी ठीक है, बढ़िया है।
1: हाँ, वहाँ पे कैसा मौसम है सर?
0: मौसम में तो अभी गर्मी है बहुत।
1: अच्छा, यहाँ
0: हाँ
1: पे भी लगभग 27-28 इतना गर्मी रहता है सर आजकल।
0: यहाँ थोड़ी और ज़्यादा है।
1: अच्छा
0: तो ऐसे मौसम में वहाँ आप लोग

0: उसमें सर?
1: मौसम में तो अभी गर्मी है बहुत।
0: अच्छा, यहाँ पे भी लगभग 27-28 इतना गर्मी रहता है सर आजकल।
1: यहाँ थोड़ी और ज़्यादा है। तो
0: अच्छा,
1: ऐसे मौसम में वहाँ आप लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं?
0: बस सर तो ये ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं और घूमने के लिए भी जाते हैं। यहाँ निशात शालमार, श्रीनगर, वाटिकन गार्डन, मुगल गार्डन, परी महल,
1: अच्छा
0: हर जगह घूम लेते हैं। सोनामर्ग है, गुलमर्ग, पहलगाम। हाँ
1: अभी तो टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ गई होगी वहां पे।
0: हाँ सर, लगभग ये तो का रिकॉर्ड मैंने सुना यहाँ चैनल पे, एक 3,000 टूरिस्ट एक दिन में सोनामर्ग आते
1: अच्छा, तो आप लोगों का
0: इतना
1: कारोबार भी
0: पर्यटक।
1: जुड़ा होगा इनसे,
0: हाँ
1: टूरिस्टों
0: हाँ
1: के साथ।
0: इससे तो बहुत रोजगार मिलता है, पर्यटक से बहुत रोजगार मिलता है कश्मीर को,
1: जी
0: क्योंकि दुकानदारों को, रेडियो पटरी वालों को,
1: जी
0: घोड़ी वालों को, बहुत को रोजगार मिलता है इससे सर। हाँ सर,
1: अच्छा है, टूरिस्ट बढ़े वहाँ पे और सुविधाएं
0: सही सही
1: बढ़े,
0: बात है।
1: लोगों को
0: अरे हर
1: रोजगार
0: जगह
1: मिले,
0: टूरिस्ट यहाँ पे इससे
1: और इसके लिए
0: रोजगार।
1: ज़रूरी है कि चारों तरफ शांति की व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे,
0: हाँ, कैमरा
1: और
0: में
1: सुरक्षा और
0: अच्छा
1: शांति के साथ अगर जीवन यापन होगा सभी का तो हर कुछ अच्छा होगा।
0: हाँ सही
1: जी
0: सही बात है।
1: बहुत अच्छा है, चलिए आप कार्यक्रम से जुड़े हुए
0: मुझे
1: हैं,
0: सुना
1: इतनी
0: ये
1: बड़ी
0: गाना
1: अच्छी।
0: अलका याद की आवाज में, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी मैं रविंद्र कुमार रवि, गांव कमरगामा, जिला मधेपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है, कैसे हैं रवि जी?
1: जी सर बिल्कुल ठीक है।
0: ठीक ठाक जब है सब कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा होगा।
1: अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बेरोजगारी है, तो थोड़ी दिनों के बाद खेती का काम शुरू हो जाएगा, धान का रो वगैरह वगैरह व्यस्त हो जाएंगे, अभी तो बेरोजगार है।
0: हाँ तो बारिश के बाद ही होगा काम शुरू।
1: जी सर अभी धान का बिचर गिर रहा है, एक माह के बाद रोप अब स्टार्ट होगा, तब हम लोग पूरे व्यस्त हो जाएंगे, अभी तो फिलहाल
0: अच्छा
1: फलका मूंग का तोराई हो रहा है।
0: बढ़िया है, चलिए रेडियो सुन रहे हैं तो कुछ उस बारे में कहना चाहें।
1: जी सर मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, मैं चौपाल, खेती गृहस्थी, नारी जगत, बाल मंडली, उर्दू प्रोग्राम, रामचरित मानस, गुंजे बिहार, हेलो फरमाइश का मैं नियमित श्रोता हूँ।
0: धन्यवाद, आज आपने फोन किया है, क्या मन बनाया है बताइए।
1: राजकुमार का टाइटल सॉन्ग सुना दी।

0: हेलो सर, नमस्कार सर। मैं संजय किशोर जी, मैं राजेंद्र सर छोटकी अम्मा जिला नवादा से बोल रहे हैं सर।
1: स्वागत
0: आ
1: है।
0: सर, 90 साल आकाशवाणी पटना का, आकाशवाणी का पूरा हो गया सर, इसलिए पूरे आकाशवाणी पटना टीम को बधाई पात्र है सर।
1: जी जी आपको भी बहुत
0: आपका
1: सारी बधाई।
0: सर, आपका तो खास करके आपका तो कहना ही नहीं है। आपका आवाज जैसे जिस प्रोग्राम में आ जाता है सर, हम खुशी से झूम उठते हैं।
1: जी
0: आपका खेल परिक्रमा हो या हेलो कार्यक्रम, कभी चिंतन में भी आ जाते हैं।
1: जी जी
0: और
1: धन्यवाद।
0: सब ठीक है सर, गर्मी पड़ रहा है बहुत, घर में पंखा चल रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रहा है सर, मुंह टूट रहा है अभी।
1: जी सावधानी बनाए रखिए, कार्यक्रम सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए।
0: हाँ ठीक है सर, हाँ सब ठीक है। मेरा फरमाइश है, फिल्म का नाम है भाई भाई और गाने का बोल है सपेरा बीन बजा मैं नाचूंगी।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हेलो जी, नमस्ते नमस्कार। मैं संजय कुमार शाह, ग्राम प्रणाम सिंगा, बिहार से। कहिए, सुगौली थाना पड़ता है हमारा, जिला मोतिहारी से।
0: जी स्वागत है आपका। शाह जी, क्या हो रहा है?
1: इसके लिए दिल से धन्यवाद। और सुनाइए, उधर अपना अपना समाचार सुनाइए, आकाशवाणी के समाचार सुनाइए, क्या है।
0: सब ठीक ठाक है यहाँ, बढ़िया है। हम लोग आपके लिए तैयार रहते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, कोई समस्या
1: चलिए,
0: नहीं है
1: ठीक है,
0: यहाँ।
1: बढ़िया रहना चाहिए। हम भी अच्छे हैं, मजे में है। आपको प्रोग्राम तो सुनते रहते हैं डेली, बिहार के लोग संगीत संगीत सुनते रहते हैं, सुबह चिंतन सुनते रहते हैं। क्या चिंतन
0: जी
1: होता है, खेती गृहस्थी कृषि चर्चा होता है, उसमें हम सुनते हैं, चौपाल भी सुनते हैं, समाचार भी सुनते हैं। 1 बजे 7 बजे जैसे संस्कृति और हिंदी अंग्रेजी तो सब समाचार चलते हैं अपने अपने समय से।
0: कोई कोई कार्यक्रम इन दिनों आपको खास पसंद आया, कुछ सुने, कुछ अगर याद हो तो बताएं।
1: याद क्या है तो ठीक है, कुछ कुछ नाटक होता है ना, मंगलवार के आता है नाटक, वो भी हमें अच्छा लगता है। और
0: अरे
1: हमें कहिए ना कि जो मित्र है तो बोल रहे हैं कि जो हमारा भी नाम बोल दीजिएगा, तो जैसे रामविलास जी है, अर्जुन जी है बैकुंठ धाम से, नरेश स्वामी है, उदय भानसकर है, तो बोल रहे हैं कि जो हम सभी के ऊपर आदमी खिलौनों को टाइटल सब सुना दीजिए।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: जी। हाँ जी नमस्कार,
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम मिर्जापुर गढ़ा पंचायत बुधा ब्लॉक।
0: क्या शुभ नाम हुआ आपका?
1: हमारा नाम अशरफी साहब हुआ
0: जी। स्वागत है आपका शर्फी जी। अपने बारे बताएं, क्या करते हैं?
1: जी बैठे हुए हैं घर पर, तबीयत खराब है, मेरा 70 बरस उम्र है।
0: अच्छा।
1: ऑपरेशन वाला प्रॉब्लम हो गया था सर, तो वही ऑपरेशन कराए थे लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ।
0: तो रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं बैठे बैठे?
1: जी जी
0: क्या क्या सुनते हैं?
1: जी सब सुनते हैं, मतलब कि हेलो फरमाइश और रात के जूते की कले मंगलवार था तो कले जूते सुने थे,

0: सब प्रोग्राम सुनते हैं सर।
1: आज क्या सुनिएगा? अभी
0: अभी हमको फिल्म में जैसे कि लैला मजनू का कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, यही गाना सुनना था।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम है रामलखन साह, मैं सुपौल जिला के बिहार बिहार से सुपौल जिला से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, स्वागत है।
1: बहुत दिन के बाद सर लगा है, हम तो बहुत पुराना होता है, 70 ईस्वी से हम सुन रहे हैं रेडियो।
0: अच्छा जी,
1: इस प्रोग्राम के बारे में मुझे पाँच बुधवार पहले पता चला, लेकिन फोन नंबर जो है तो ठीक से लिख नहीं पाते थे।
0: अच्छा,
1: रविवार को जो आप फोन नंबर लिखाए थे उस रोज हम नंबर ठीक से लिख सके। और सब कैसे है सो बताइए।
0: सब ठीक ठाक है। वैसे आप अपने बारे बताइए, क्या करते हैं आप, कुछ बताइए।
1: मैं तो जन वितरण विक्रेता हूँ, 75 वर्ष उम्र हो गया है, डायबिटीज का पेशेंट हूँ।
0: तो घर पर बैठ के रेडियो का आनंद लेते हैं।
1: हाँ, घर पर बैठ के रेडियो का आनंद लेते हैं
0: जी। कौन सा कार्यक्रम ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: हम तो सर सवेरे रेडियो खोलते हैं, सबसे पहले तो 6 बजे का समाचार सुनता हूँ, उसके बाद जो है सो रामायण का जो रिपोर्ट है वो सुनता हूँ, फिर 8 बजे समाचार सुनता हूँ, 2 बजे समाचार सुनता हूँ, बीच में जो है सो मान लीजिए रस्म होता है वो सुनता हूँ, शाम में 7:30 बजे 6:30 बजे हम रेडियो खोलते हैं दोपहर सुनने के लिए, और 11 बजे रात का जो भी प्रोग्राम होता है सब सुनते हैं।
0: चलिए, धन्यवाद। बहुत सारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और आज अभी आपने फोन किया है, तो बताइए क्या सुनना चाहेंगे।
1: हमको आप जो है तो मोहम्मद रफी साहब जो गाए हैं दोस्ती फिल्म में, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, यही मेरा ख्वाहिश है आज।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: नमस्कार सर।
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संजय किशन सर हैं सर।
0: हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन कहाँ से?
1: नमस्कार। हाँ सर, हम बेगूसराय से बोल रहे हैं सर। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ सर। पानी पूरी बेचते हैं सर अपने गांव में।
0: जी, स्वागत है आपका।
1: बहुत दिन बाद लगा सर। मैं आज ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी आपसे बात हो रही है सर। पुराना श्रोता हूँ आपका सर।
0: तो बताइए, रेडियो के बारे में कुछ आपके अनुभव होंगे, कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना हम भी चाहेंगे।
1: ये सर 90-92 से ही हम इस आकाशवाणी को सर रेडियो से ज़्यादा मेरा लोकप्रिय बना हुआ रहे। चाव से चौपाल किसानों के लिए सर ये सब बहुत अच्छे लगते थे। युग युग भी सर शाम में इंतजार रहता था। अच्छे अच्छे गाने सुनाए जाते थे इसमें से युवा वर्ग के लोग के लिए। बहुत पुराना सर ये सब था सर।
0: अभी आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: सुबह में सर ये हो जाती है भजन, और ये रामचरितमानस सर विशेष करके सुनते हैं सर। आपकी जो फरमाइश हेलो फरमाइश जो होती है सर, काफ़ी दिनों से सर मेरा ये मन था कि सर को लगाए कॉल, लेकिन आज संयोग से सर देखिए लग गया। ये गाना सुनना था सर। गाना तो नाम फिल्म का तो याद नहीं है, लेकिन याद है सर ये गाना का बोल याद है। जरा मुखड़ा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार
0: पर
1: करने वाले हैं कोई गैर नहीं सर।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: नमस्कार
0: बताएं।
1: नमस्कार जी, हम जिला नवादा थाना अकबरपुर और निमदारगंज से बोल रहे हैं।
0: क्या शुभ नाम हुआ आपका?
1: राजेंद्र प्रसाद
0: जी राजेंद्र प्रसाद जी, स्वागत है आपका।
1: जी। हाँ,
0: अपने बारे में कुछ जानकारी दें हमें।
1: वही एक बार और लगा था ना, तो बोले थे कि निमदारगंज में श्रृंगार का दुकान है छोटा मोटा,
0: श्रृंगार की दुकान है आपकी?
1: चूड़ी उड़ी रहता है ना,
0: हाँ,
1: वही सब सिंगार और चूड़ी उड़ी रहता है दुकान में, बेचते हैं। सिंगार का दुकान है, चूड़ी उड़ी ये सब रहता है, थोड़ा बोल पहले ज्यादा होता है ना, तो समझा बुझा देना पड़ता है। आपने
0: चलिए ठीक है। आज आपने फोन किया, क्या सुनेंगे?
1: कहा बोल रहे, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वह 10 लाख।
2: गरीब

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: नमस्कार सर।
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम अनिल कुमार यादव बोल रहे हैं सर, बक्सर से। जी
0: जी, स्वागत है अनिल कुमार जी। अपने बारे बताएं।
1: सर, यहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड से काम करते हैं, 2-3 बार कॉल किए हैं सर।
0: अच्छा
1: हेलो
0: अच्छा
1: अनिल सर, मैं
0: हाँ हाँ हाँ हाँ आपसे बात हुई है जी।
1: जी सर।
0: क्या हाल चाल है, बताइए।
1: हाल चाल तो ठीक है सर। थोड़ा गाना सुनना था तो थोड़ा हमको सुनवा दीजिएगा।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612222500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612222500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना का केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है बिहार का लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शैलेंद्र कुमार सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। संगत कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं। ढोलक पर संगत कर रहे हैं अशोक कुमार, बांसुरी पर रामानुज उपाध्याय और शहनाई पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद मुस्लिम। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं देवी गीत से।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बिहार के लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र कुमार सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घरनी।
1: महिला सभन के पसंदीदा कार्यक्रम घरनी में सभन सखी सहेली के स्वागत बाटे और हमरा ओर से मीनू के ओर से प्रणाम। तो बताई रवा लोकेशन बानी? खूब निमन से तो बानी नू। देखिए कार्यक्रम में आज खास जानकारी के संगे लोकगीत के लड़ी रही, वहीं मनोरंजन के संगे खास बात पे गप सप भी करम। रवा सभन से आज मन कर रहल बा कि काहे ना योग करी निरोग रही, एकरे पे गप सप कर ली। देखी योग भारत के प्राचीन और अमूल्य धरोहर है। योग तो शरीर मन और आत्मा के जोड़े के काम करेला। आज भाग दौड़ वाला जिंदगी में केहू के पास समय के अभाव बाटे, हर कोई के पास, पर का ई सोचनी है कि योग शरीर खातिर कितना फायदेमंद बाटे? अगर नियम से योग करम तो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहम। योग खाली व्यायाम नहीं खे बल्कि एगो संपूर्ण जीवन

पद्धति ह, वहीं योग स्वस्थ और सुखी जीवन के आधार भी बा। तो हर दिन मतलब प्रतिदिन माने कि रोजे योग के आपन दिनचर्या के हिस्सा बनाई, मतलब रोज योग करी। योग करे से ढेर मनी फायदा भी बाटे, शरीर मजबूत और लचीला हो जाएला, वहीं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होला, मानसिक शांति होखेला, योग से तनाव और चिंता भी कम हो जाला, बीमारी से लड़े के शक्ति बढ़ जाएला, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला योग। मन के एक चित रखे में भी मतलब एकाग्रता में वृद्धि करेला योग। पढ़ाई करे में, काम करे में योग के खूबे महत्व बाटे। योग से अनिंद्रा के समस्या भी कम हो जाएला। ढेर मनी लोग के नींद ना आवे वाला ऐसा समस्या रहेला, तो योग भगाई रोग, तो करी योग। योग करे से खून के संचार भी नीमन रहेला, मोटापा पे भी नियंत्रण हो सकेला। कुछ खास खास योगासन बा जेकरा करे से फायदा ही फायदा बा, जैसे कि ताड़ासन, ये शरीर के संतुलन और लंबाई बढ़ावे में मदद करेला। वहीं वृक्षासन बा, ये एकाग्रता और संतुलन में वृद्धि करेला। भुजगासन बा, ये आसन करे से रीढ़ के हड्डी खूबे मजबूत हो जाएला। व्रजासन के बात करी तो ई पाचन क्रिया के खूबे नीमन कर देवेला। वहीं पवन मुक्तासन बा, ई आसन से गैस और कब्ज के समस्या में ढेर मनी लाभ होखेला। शवासन बा, ई मानसिक शांति और तनाव के दूर करे के खातिर ई आसन खूबे नीमन बा। देखिए योग तो सबके खातिर बा, चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चा या बूढ़ा, सब लोग योग कर सकेलन। अब बात महिला सभन के, तो आज के नारी सब काम में आगे बाढ़ी। देखी महिला सब तो घर परिवार के आधारशिला है, अगर वो स्वस्थ रही हैं तो पूरा परिवार के देखी हैं और स्वस्थ रखी हैं। तो यही से महिला सभन के चाहें कि कुछ समय अपना खातिर जरूर निकाली। अगर घर के महिला ही योग करे लगस तो घर के बच्चा और भी परिवार के सदस्य के बोल सकेली कि योग करे से का फायदा बा, उनकरा योग करे के खातिर प्रेरित कर सकेली। अगर नियम से योग करत बानी रवा लोग, तो समाज के लोग के भी योग करे के खातिर जागरूक कर सकेला। आज के नया पीढ़ी के बच्चा सब के भी योग के फायदा के बारे में बता के अपना साथ योग करा सकेला। हमरा विचार से हरेक व्यक्ति के अपना दिनचर्या में योग खातिर कुछ समय जरूर रखे के चाहिए, चाहे वो भोर पहर होके या फिर जब भी समय मिले। पर एगो बात कहम कि योग भोर पहर करे से शरीर के ज़्यादा फायदा करेला। समय रहते समय पे अगर समय के समय देम तो इस समय रवा खातिर बहुते नीमन समय लाई। तो योग के समय दही ताकि निरोग रोग मुक्त रहम। योग से खाली शारीरिक फायदा ही नहीं, बल्कि 50 की उम्र वाला व्यक्ति भी योग से 30 के दिखाई देवे लगी। तो बानू योग खूबे नीमन। देखिए योग के संगे संगे हमेशा खुश रही, काहे कि आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास छोट से छोट और बड़ से बड़ समस्या बाटे। पर इस समस्या के हमेशा समाधान पे ध्यान दें, ना कि समस्या के बड़ा करें। काहे कि निरोग रहे के सबसे बड़का कारण इंसान के समस्या के समाधान ही बाटे। जो ना मिलल ओकर गम ना, और जो मिल रहल बा ओ केहू से कम नहीं। सोच बदली, विचार बदली और हमेशा सकारात्मक सोच और योग से आगे बढ़ी। तो देखी अभी तो खूब निमन निमन रवा से गप सप कैनी, योग करी और निरोग रही एकरा पर। और वह सभन के इंतजार होई कि अब कार्यक्रम में आगे बढ़ी और गीत गवनाई भी सुनाई जिसन की हम कहनी है। तो चली मंदाकिनी सिंह से शुरुआत करतनी देवी गीत से।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हाँ तो बहुत निमन देवी गीत रहे मंदाकिनी सिंह से अभी हमने के सुननी। और अब एगो बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता सुन लेवल जाओ। भेंट वार्ता के विषय बा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता। भेंट वार्ता कार बाड़ी अमृता सिंह और भेंट करतरी सुधा सिंह। तो चलिए सुनी ई भेंट वार्ता।
4: श्रोताओं नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, जब महिलाओं के समग्र विकास की बात होती है तो बेहद जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर हों। इसके लिए उन्हें हर तरह से प्रोत्साहन देने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं के बीच इसके लिए जागरूकता का प्रचार प्रसार भी किया जाता है ताकि वे सबल बने, आत्मनिर्भर हों। विशेष रूप से आर्थिक आत्मनिर्भरता से उनमें आत्मबल में वृद्धि होती है। स्वयं सहायता समूह भी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सहायक साबित हो रहा है। स्वयं सहायता समूह किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है और वे किस तरह से इसका लाभ उठा सकती हैं, इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं अमृता सिंह। अमृता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अमृता जी, जैसा कि जानने कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं, महिलाओं में के बीच जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस तरह से आत्मनिर्भरता आ रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वयं सहायता समूह है क्या?
1: जी, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि असल में स्वयं सहायता समूह होता क्या है। तो ये 10 से 20 जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग होते हैं उनका अगर एक तरह से ग्रुप बनाया जाए जिसमें खास करके महिलाएं होती हैं, तो ये इस तरह का एक स्वैच्छिक समूह तैयार होता है। अच्छा। जो अपनी इच्छा से 10 से 20 लोगों जुड़ते हैं और वो अपनी आपसी बचत, आपसी सहयोग और आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से एक ग्रुप बनाते हैं।
0: तो यही इसमें किसी तरह की क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे लोग होना चाहिए, बस आपस में उनकी सहमति होनी चाहिए।
1: जी जी, और इसमें जनरली अगर आप देखेंगे तो ये प्रायः ग्रामीण महिलाओं का एक समूह होता है और जिनका मुख्य मकसद होता है कुछ आय का स्रोत निकालना, आत्मनिर्भर होना, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी कभी कभी आप कह सकती हैं। तो इसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। और इस समूह का जो खास मकसद रहा या सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन दिया गया, वो आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। और जिससे कि एक मुझे जो समझ आया है, क्योंकि मैं ग्रामीण स्तर पर जाकर देख भी रही हूं, तो ये बहुत काम करने वाला एक सब्जेक्ट बना, क्योंकि कई बार ग्रामीण महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनके पास कोई माध्यम नहीं होता, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है।
0: उनके पास ऐसा भी नहीं कि नियमित आय हो। कभी कभी कुछ पैसे आ जाते हैं। हाँ। तो किस तरह से वो बचत करें, ये समस्या।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा, तो मुझे जैसा लगा कि मैंने भी आत्मनिर्भरता को बहुत करीब से देखने का प्रयास किया, तो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से अगर महिला सक्षम हो तो वो कुछ ना कुछ अपने समाज में एक अपना मकान बना लेती है। इसलिए इस तरह से ये स्वयं सहायता समूह उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया है।
0: तो ये जैसे कि कुछ महिलाएं आपस में सहमति से एक समूह बनाया, तो आखिर फिर ये कार्य कैसे करता है,
1: क्या है? तो बेसिकली सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जो ग्रामीण महिलाओं को अलग अलग तरह का कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। तो सवाल ये भी था कि अगर हम प्रशिक्षण दे भी देंगे तो उसके बाद क्या? तो सरकार ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि अगर हमने आपको किसी भी चीज का, सपोज मान लेते हैं अचार और बड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया, तो जब तक आप उसको बनाकर बाजार तक नहीं पहुंचाएंगी तब तक आपको आय का स्रोत नहीं जनरेट होगा। तो इसलिए ये जो स्वयं सहायता समूह था, इसमें सरकार के द्वारा छोटे छोटे ऋण उनको उपलब्ध कराए गए या उनसे कहा गया कि आप अपने ही कमाई से, अगर आपके पास पहले से कुछ पूंजी है तो उसको जोड़िए, हम आपको प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद आपके बनाए हुए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। तो सरकार का जब सहयोग मिला तब ये महिलाएं इस तरीके से छोटे छोटे प्रशिक्षण लेकर छोटे छोटे कार्यों को करने लगी। लेकिन एक अकेली महिला उतना नहीं कर सकती थी, इसलिए 10 से 20 महिलाओं का समूह बनाया गया, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और आत्मविश्वास भी बढ़ा और उनको हम कर सकते हैं वाली भावना आई और सरकार की तरफ से जो सहयोग मिला तो फिर वो आगे बढ़ने लगी।
0: पहले मैं ये समझ रही थी कि कुछ महिलाएं आपस में समूह बनाती हैं और अपने जो उनके पास सेविंग्स होती है उनको इकट्ठा करके कुछ व्यवसाय जैसा शुरू करती है।
1: शुरुआती दौर में यही था।
0: शुरुआत में यही था।
1: और यही था भी, सरकार की उस समय कोई ऐसी योजना नहीं थी। बाद में धीरे धीरे उनको लगा कि महिलाओं के पास तो पहले ही से पैसा नहीं है और पुरुष उनको इतना सहयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक आम धारणा है कि महिलाएं पैसा मतलब बचा नहीं पाएंगी या डूब जाएगा,
0: या फिर उन पे ये इतना विश्वास नहीं था कि वे कुछ रोजगार करें और उससे आए, ऐसा लगता है कि वो डूब जाएगा।
1: तब जाकर सरकार ने पैसे देने शुरू किए और ये ऋण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को मिलने लगा। तो इससे न सिर्फ वो अपना व्यवसाय

0: खड़ा कर पा रही हैं, बल्कि अपने परिवार को भी संबल दे रही हैं। तो इस तरीके से जब मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बहुत अच्छी योजना है, अगर आप बिहार के स्तर पर या भारत के स्तर पर देखेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया योजना सरकार की तरफ से की गई है।
1: तो इसमें किसी भी उम्र की महिलाएं आ सकती हैं?
0: हाँ, इसमें देखिए बेसिकली वो काम करने लायक होनी चाहिए। अब 60 साल के बाद वाली महिलाएं जो हैं वो जुड़ती तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुड़ सकती,
1: जो भी कार्य वो कर सकती,
0: लेकिन वो जितना कर सकती हैं तो वो समूह डिसाइड करता है कि किसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और उस तरीके से वो काम करता है। साथ में इनके जो बनाए गए उत्पाद होते हैं उनको सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार का मेला आयोजन करते हैं, प्रदर्शनी आयोजन करते हैं, वहाँ उनको प्रोत्साहित करने के लिए
1: एक तरह से बाजार भी उपलब्ध कराया जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बहुत ही अच्छी बात है
0: जी।
1: तो यानी कि महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने, उसमें स्वयं सहायता समूह की काफी बड़ी भूमिका हो सकती है।
0: बहुत।
1: तो इसका क्या एक साइज भी होता है कि कितना समूह में होनी चाहिए?
0: हाँ,
1: इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए?
0: हाँ, आमतौर पर जो समूह बनाया गया वो 10 से 20 महिलाओं का बनाया गया। तो उससे क्या होता है ना कि सबकी कमाई बराबर होती है और सबको थोड़ा कमाने का मौका मिलता है। ज्यादा भीड़ हो जाती है तो चीजें ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती थी, इसलिए मात्र उसमें रखा ही गया है कि 10 से 20 हो सकते हैं एक स्वयं सहायता समूह में। और अलग अलग बैकग्राउंड की महिलाएं आती हैं, तो कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट होती है, कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होती है, कोई बहुत अच्छा बोल पाती है, कोई अपनी बातों को रख पाती है, कस्टमर तक पहुंचा पाती है, तो सब मिला जुलाकर एक बहुत ही अच्छी चीज तैयार होती है और इस तरीके से ये काम करता है।
1: मतलब उसमें जिसमें जिसका जो भी कौशल है उसके हिसाब से उसको प्रमोट किया जाता है।
0: और अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि स्वयं सहायता समूहों को हर व्यवसाय से जोड़ा गया है। जैसे अभी मैं बिहार सरकार की अगर बात करूं तो उन्होंने आंगनबाड़ी के जो बच्चे थे उनकी ड्रेस बनाने का उनको काम दिया, तो उनको सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: अच्छा।
0: अब वो महिलाएं सिलाई प्रशिक्षण, निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण वो प्राप्त
1: नहीं, ये मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर कि ये जो समूह बना तो ये प्रशिक्षण फिर सरकार की ओर से दिया जाता है?
0: बिल्कुल निःशुल्क। उसके लिए उनको एक रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, नाबार्ड की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, एमएसएमई की तरफ से, मतलब हर तरह से उनको निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं और तब उसको फिर काम देते हैं।
1: अच्छा।
0: और जब ऑर्डर मिलता है और प्रशिक्षित हैं और आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है तो आपके लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो इस तरीके से
1: यानी कि जो कार्य करना चाहती है, काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफी अवसर,
0: बहुत बहुत अवसर हैं और ये अवसर कन्वर्ट भी हो रहे हैं। और अगर आप स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठेंगी तो उनकी सफलता की जो कहानियां हैं जब आप सुनेंगी तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ इस तरह की महिलाएं हैं।
1: तो ये मतलब ग्रुप मान लीजिए इतना ही है, और जब ये व्यवसाय बड़ा हो जाता है तो उसका कुछ और प्रारूप भी होता है क्या?
0: हाँ, उसको जब जैसे इनका व्यवसाय बड़ा होने लगता है तो फिर सरकार इनको और सहयोग देना शुरू करती है अलग अलग तरीके से। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग सरकार की तरफ से सहयोग मिल गया, या बहुत सारे जैसे पीएमजीपी सरकार के कई लोन की योजनाएं हैं, स्टार्टअप योजना है, मुद्रा लोन है, बहुत तरीके, मतलब इनको सीड फंडिंग बहुत बड़ी दी जाती है। और धीरे धीरे इन महिलाओं को का प्रशिक्षण का लेवल भी बढ़ाते हैं ताकि तुम कर सको। और एक कितना भी बड़ा व्यवसाय हो, अगर आप देखेंगी तो 10 से 20 लोग काफी होते हैं किसी भी इतने भी बड़े व्यवसाय को करने के लिए। तो यही वो तरीका है। और सबसे अच्छी बात है कि अचार पापड़ से लेकर बड़े से बड़ा व्यवसाय ये महिलाएं कर रही हैं और हमारे देश में कर रही हैं,
1: यही स्वयं सहायता समूह के जरिए
0: के माध्यम से कर रही हैं। अगर ये मशरूम उत्पादन कर रही हैं तो बहुत हाई लेवल पे जाके,
1: छोटे लेवल से करते करते काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है।
0: और वो ऐसी महिलाएं हैं जिनको अगर सच पूछे तो कौखो गौखो बोलना भी नहीं आता है, बट वो इतना अच्छा काम करती हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि में काउंट होना चाहिए।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्वयं सहायता समूह जो है महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहा है, और जो भी महिला आगे कार्य करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है, तो इससे जुड़ सकती है। तो इसके लिए भी क्या है कि जो महिलाएं करना चाहती हैं शुरू, तो उसके लिए भी कुछ है क्या कि किस तरह नहीं से शुरू कर सकती हैं।
0: हाँ, नॉर्मली तो अगर आप देखेंगे तो जीविका एक बहुत बड़ा माध्यम है और गांव-गांव की जड़ों तक जीविका है। तो किसी भी गांव में अगर किसी महिला के मन में ये इच्छा होती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो वो जीविका तक पहुँचती है,
1: जीविका से जुड़ जाएगी।
0: और वो जीविका से जुड़ी हुई है तो वो अपने आप ही स्वयं सहायता समूह में आ जाती है।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद वो आराम से उसमें काम कर सकती है। तो इस तरीके से उनकी शुरुआत हो जाती है व्यावसायिक रूप से।
1: अमिता जी।

0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। जो भी महिला आगे बढ़ना चाहती हैं, आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने स्वयं का रोजगार करना चाहती हैं, उनके लिए स्वयं सहायता समूह एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। तो आप हमारे स्टूडियो में आई, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
2: हाँ, तो अभी हमने के बहुत ही नीमन भेंट वार्ता सुननी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता। भेंट वार्ताकार रही अमृता सिंह और भेंट कैली सुधा सिंह। तो अमृता सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद ई भेंट वार्ता खातिर। और अब तो बुझाता कि कहे ना, एगो गीत फिर से मंदाकिनी सिंह से हमने के सुन लेवल जाओ, वो भी झूमे वाला झूमर।

0: हाँ, तो मंदाकिनी सिंह से बहुत निमन निमन गीत सुननी। अभी झूमर सुन के तो लगता कि रवा सब भी खूब झूम गई हो हम। तो मंदाकिनी सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद सब गीत ला। और अब घड़ी के इशारा होता कि हमरा चले के चाहिए, तो मीनू के दही विदा, प्रणाम।
1: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घरनी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम

फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में

0: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रेष्ठ भारत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय है भारतीय विरासत का वरदान है योग। वार्ताकार हैं नेहा कुमारी।
2: भारतीय संस्कृति की विशाल धारा में यदि कोई ऐसी परंपरा है जिसने हजारों वर्षों से मानव को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाया है तो वह है योग। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो प्रायः आंखों के सामने कठिन आसनों की तस्वीर उभरती है। कुछ लोगों को लगता है कि योग केवल सुबह 4 बजे उठकर उल्टे सीधे आसन करने का नाम है, लेकिन सच तो यह है कि यदि जीवन एक वीणा है तो योग उसकी मधुर स्वर लहरी है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सुर में बांध देती है। योग केवल कुछ आसनों का समूह नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह भारत की उस प्राचीन चेतना का प्रतीक है जो मनुष्य को प्रकृति, समाज और स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। श्लोक है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। तो आज जब पूरा विश्व तनाव, अवसाद, जीवन शैली संबंधी रोगों और मानसिक असंतुलन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत की यह अमूल्य धरोहर मानवता के लिए आशा का दीपक बनकर उभरी है। योग की जड़ें भारतीय इतिहास की गहराइयों तक फैली हुई हैं। माना जाता है कि योग का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कुछ मुहरों में ध्यान मग्न मुद्राओं के चित्र मिले हैं जिन्हें योगाभ्यास का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। वेदों, उपनिषदों, महाभारत और भगवद गीता में योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में कहा गया है, ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम, अर्थात इंद्रियों की स्थिरता और नियंत्रण को ही योग कहते हैं। लगभग 2 शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और योग सूत्र

की रचना की। उन्होंने योग को परिभाषित करते हुए कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस प्रकार योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने और आत्मबोध की दिशा में बढ़ने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। भारत में योग सदैव जनजीवन का हिस्सा रहा है। ऋषियों के आश्रमों से लेकर गृहस्थ जीवन तक योग के विभिन्न रूपों का अभ्यास होता रहा। प्रातः काल ध्यान करना, सूर्य को अर्घ देना, प्राणायाम करना, संयमित भोजन करना और प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या अपनाना भारत जीवन शैली का अभिन्न अंग था। आजकल लोग मोबाइल की बैटरी 5% होते ही चार्जर खोजने लगते हैं, लेकिन स्वयं की ऊर्जा बैटरी कब शून्य के करीब पहुंच जाती है, इसका ध्यान नहीं रखते। तो योग उसी शारीरिक और आत्मिक चार्जर का काम करता है। अच्छा, योग कोई आज का कंसेप्ट नहीं है। पुरातन काल को छोड़ भी दें तो आधुनिक काल में भी स्वामी विवेकानंद जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिकागो धर्म संसद में भारत की आध्यात्मिक विरासत का परिचय दे रहे थे, तब उन्होंने योग के मूल भाव अर्थात मानव एकता और आत्मिक विकास की अवधारणा को भी विश्व के समक्ष रखा। इसके बाद 20वीं शताब्दी में वीकेएस अयंगर, पट्टाभी जोईस और अन्य योगाचार्यों ने योग को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21वीं सदी की बात करें तो बाबा रामदेव के योग को घर घर पहुँचाने की कोशिश को भला कौन नकार सकता है। योग व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं तथा पाचन एवं श्वसन प्रणाली बेहतर ढंग से कार्य करती है। विभिन्न शोधों में यह पाया गया है कि योग तनाव को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने तथा मधुमेह जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों के प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। मानसिक स्तर की बात करें तो योग एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा के तनाव को कम करने का माध्यम बन सकता है, जबकि कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह कार्य क्षमता और भावनात्मक संतुलन को सुदृढ़ करता है। हल्के फुल्के अंदाज में कहा जाए तो योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल शरीर को फिट रखना पर्याप्त नहीं है, मन की वाईफाई कनेक्टिविटी भी मजबूत होनी चाहिए। ध्यान और प्राणायाम इसी आंतरिक नेटवर्क को सुदृढ़ करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में भी योग व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मबोध की दिशा में अग्रसर करता है। इसके अलावा चरित्र निर्माण में ये सबसे अधिक सहायक है। पतंजलि के अष्टांग योग में यम और नियम के माध्यम से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच और संतोष जैसे मूल्यों पर बल दिया गया है। ये मूल्य केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक हैं। योग पर्यावरणीय चेतना को भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय चिंतन में मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग माना गया है। योग हमें सिखाता है कि जिस वायु को हम ग्रहण करते हैं, जिस जल को हम पीते हैं और जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। इसीलिए कहा गया है कि तन स्वस्थ हो, मन निर्मल हो, जीवन में मधुर उजास रहे, योग की पावन साधना में हर प्राणी का विश्वास रहे। भारत में योग केवल व्यक्तिगत साधना का विषय नहीं है, बल्कि अनेक संस्थानों के माध्यम से इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड स्थित पतंजलि योग पीठ हरिद्वार विश्व के सबसे बड़े योग एवं आयुर्वेद संस्थानों में से एक है। इसी प्रकार कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र योग के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का एस व्यास विश्वविद्यालय योग शिक्षा और शोध को उच्च शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बिहार के लिए गर्व की बात है कि मुंगेर स्थित बिहार स्कूल ऑफ योगा ने योग को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इस संस्थान ने योग को केवल आसनों तक सीमित न रखकर उसे जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। आज विश्व के अनेक देशों में इसके शाखाएं कार्य कर रही। इन संस्थानों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि योग केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता भी है। योग के विषय में एक प्रचलित धारणा है कि इसे केवल प्रातः काल में ही किया जा सकता है। यद्यपि ब्रह्म मुहूर्त अथवा सूर्योदय से पूर्व का समय योगाभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत और मन एकाग्र रहता है। फिर भी व्यक्ति अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार उचित समय का चयन कर सकता है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि योग एक पूरा पैकेज है जिसमें कि 8 आयाम शामिल हैं। पहला है यम यानी कि समाज और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार। दूसरा नियम
यानी कि स्वयं के प्रति आचरण और शुद्धता। तीसरा आसन यह सर्वाधिक प्रचलित आयाम है योग का, जिसमें कि शरीर को स्वस्थ और स्थिर रखने के लिए विभिन्न योग मुद्राओं को शामिल किया जाता है। चौथा है प्राणायाम यानी कि श्वास पर नियंत्रण। प्राणायाम यानी कि प्राण और श्वास को नियंत्रित करने की तकनीक है। इसके साथ आता

0: है प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण, धारणा यानी एकाग्रता, और एकाग्रता का ही नेक्स्ट स्टेप है ध्यान यानी कि मेडिटेशन, बिना किसी रुकावट के उसी एकाग्र अवस्था में लगातार बने रहना। इसके पश्चात आता है समाधि यानी कि परम चेतना की अवस्था। तो इसे केवल आसन यानी शारीरिक मुद्राओं और प्राणायाम को ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि समग्रता यानी कि एज अ होल में देखना चाहिए। अब सवाल आता है कि योग कब करना चाहिए? योग सदैव खाली पेट या भोजन के 3 से 4 घंटे के बाद करना चाहिए। अभ्यास स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर किया जाना चाहिए। अपनी आयु और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुरूप योगासन चुनने चाहिए। गंभीर रोगों की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह लेना अधिक उचित होता है। योग में निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का नियमित अभ्यास भी लाभकारी सिद्ध होता है। कहा भी गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। योग भी धैर्य और निरंतरता की साधना है, तात्कालिक चमत्कार का माध्यम नहीं है। योग को अगर प्रसार और प्रचार किया जाए, यदि योग को भारत विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है, तो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। यदि योग को भारतीय विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है, तो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। सरकारी स्तर पर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में योग शिक्षा को व्यावहारिक रूप में प्रोत्साहित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति किए जाए। सार्वजनिक पार्कों एवं सामुदायिक केंद्रों में निःशुल्क योग शिविर आयोजित किए जाए। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए विशेष योग कार्यक्रम विकसित किए जाए। मीडिया और रेडियो के माध्यम से सरल योग अभ्यासों का प्रयास किया जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर योग के लाभों का प्रमाण आधारित प्रचार किया जाए। इसके साथ ही आयुष मंत्रालयों की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाए। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय की योजनाओं को अधिक व्यापक स्तर पर लागू किया जाए। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं नियमित योग कार्यशालाओं का आयोजन कर सकती हैं। कॉर्पोरेट संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए योग सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। परिवारों में बच्चों की छोटी आयु से ही योग और ध्यान की आदत विकसित की जा सकती है। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं योग को स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों से जोड़ सकती हैं, क्योंकि योग तभी सार्थक होगा जब वह मंचों और उत्सवों से निकलकर घरों के आंगन तक नियमित रूप से पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग आज भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव पर 177 देशों ने समर्थन दिया और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष विश्व भर में करोड़ों लोग इस दिन योगाभ्यास करते हैं। यह केवल भारत की सांस्कृतिक विजय नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का वैश्विक विस्तार है। इसके अलावा आज स्थिति यह है कि योग भारत की सीमाओं को पार कर वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और करोड़ों लोग इसे स्वस्थ एवं संतुलित जीवन की कुंजी के रूप में अपना रहे हैं। योग ने यह सिद्ध किया है कि प्राचीन ज्ञान आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। आज का युग तीव्र प्रतिस्पर्धा, भागदौड़ और डिजिटल निर्भरता का युग है। बच्चे स्क्रीन टाइम से प्रभावित हैं, युवा तनावग्रस्त हैं और वृद्ध जन जीवन शैली संबंधी रोगों से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में योग की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। योग हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। दरअसल योग का उद्देश्य है योगः स्वस्थस्य स्वास्थ्यं रक्षणम् आतुरस्य विकार प्रशमनम्, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगग्रस्त व्यक्तियों के कष्ट का समन करना ही योग का उद्देश्य है। भारतीय विरासत में योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। यह हमें स्वयं से जुड़ना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करना सिखाता है। आज आवश्यकता है कि हम योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अंत में एक सद्भावना संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी मंगल का अनुभव करें और कोई भी दुख का भागी न बने। यही योग का संदेश है, यही भारत की शाश्वत चेतना है और यही हमारी सांस्कृतिक विरासत की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है, जो विश्व के लिए उपहार है और मानवता के लिए आशा की एक उज्जवल किरण। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रेष्ठ भारत। वार्ता का विषय था भारतीय विरासत का वरदान है योग। वार्ताकार थी।

नेहा कुमारी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण इस अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं देशगान फिल्म फना से। आवाज है महालक्ष्मी की, गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 06122225000 और 06124026349। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लें, 06122225000 और 06124026349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 यानी कि आज और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: आज भी बॉस है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म केदारनाथ के इस गीत के साथ। आवाज है अमित त्रिवेदी की, गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो

0: कल्चर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 यानी कि आज दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-22-22-500 और 0612-40-26-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 यानी कि आज और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म छिछोरे से। आवाज है अरिजीत सिंह की, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म राब्ता से, आवाज है अरिजीत सिंह की, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम।

0: एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को, यानी कि आज दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-22-22-500 और 0612-40-26-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 यानी कि आज और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म पीके से। आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की, गीतकार स्वानंद किरकिरे और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश फिल्म MS धोनी से। आवाज है अरमान मलिक की, गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई है अमाल मलिक।

0: इसी गीत के साथ समाप्त होता है फिल्म संगीत। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से?

0: मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र करने की घोषणा की है। श्री चौधरी आज पटना के फुलवारी शरीफ में नदियावा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को मिलने वाली 4,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि 30 जून तक उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कोइलवर से भागलपुर तक 83 किलोमीटर लंबे गंगा पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 17,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। समारोह को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर स्थित राज्य बीज उत्पादन फार्म में खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कृषि ग्रामीण विकास, विकसित भारत जीराम जी अधिनियम, पीएम आवास योजना और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री का विद्यापति भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है, जहां वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र

0: के लिए आज दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए हैं। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जाएंगी। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। गृह विभाग ने केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में चल रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन किया है। परिषद की ओर से जारी पत्र के अनुसार आज दोनों पालियों में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से 1 जून से अब तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। बारिश की कमी के कारण पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 12.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, नालंदा और शेखपुरा जिले में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना में तैयार होने वाली नई टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्रा रखने का ऐलान किया है। जनाब चौधरी आज पटना के फुलवारी शरीफ के नदियावां में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के तारीखी और सकाफती वर्से को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर चौधरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को मिलने वाली 4,000 करोड़ रुपये की बकाया रकम 30 जून तक फराहम करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आला ने मालूमात दी कि कोइलवर से भागलपुर तक 83 किलोमीटर तवील गंगा पाथवे तामीर किया जाएगा। इस पर 17,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने खुशहाल बिहार और तरक्की याफ्ता बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि आज मंजरनामा पूरी तरह बदल चुका है और रियासत में सरमायाकारी के इम्कान बढ़े हैं। इससे पहले वजीर आला ने कैंप में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके हल के लिए हुक्काम को हिदायत दी। तकरीब से नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और कोऑपरेटिव के वजीर रामकृपाल यादव ने भी खिताब किया। मरकजी वजीर बराए ज़रात और किसान फलाह बहबूद शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में वाक़ स्टेट सीड प्रोडक्शन फार्म में खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रोग्राम के दौरान जनाब चौहान किसानों के साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। इससे कबल मरकजी वजीर ने आज वजीर आला सम्राट चौधरी के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में बुनियादी तौर पर ज़रात, देही तरक्की, विकसित भारत, जी राम जी एक्ट, पीएम आवास योजना और मरकज़ और रियासत के तालमेल से जुड़े मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया कि मरकजी वजीर मिस्टर चौहान ने आज सुबह पटना के गोलघर अहाते में सफाई मुहिम के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। साथ ही वो एमएलए फ्लैट अहाते में शजरकारी के प्रोग्राम में शामिल हुए। मरकजी वजीर का विद्यापति भवन में मुनाकिद होने वाले विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत का प्रोग्राम है, जहां वो मरकजी हुकूमत की कामयाबियों और आइंदा की तरजीहात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। महकमा एक्साइज, जेल और ट्रांसपोर्ट में कांस्टेबल और वार्डन की तकर्री के लिए आज 2 शिफ्टों में इम्तहान का इनाकाद किया जा रहा है। امتحان کے پیش نظر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ آف کانسٹیبل سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق

0: इम्तहान के लिए रियासत भर में 544 मराकज़ बनाए गए हैं। 5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इम्तहान में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे ने उम्मीदवारों की सहूलत के लिए आज 25 स्पेशल ट्रेनें चलाने का इंतज़ाम किया है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत मुख्तलिफ स्टेशनों से चलाई जाएंगी। रेलवे इंतज़ामिया ने उम्मीदवारों से पहले वक्त पर स्टेशन पहुँचने और मुकर्रा ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अपील की है। महकमा दाखला ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड सिपाही भर्ती इम्तहान को मुलतवी करने के सिलसिले में चल रही गुमराह कुन अफवाहों की तरदीद की है। बोर्ड की जानिब से जारी करदा मकतूब के मुताबिक आज दोनों शिफ्टों में मुनक़िद होने वाली तहरीरी इम्तहानात पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक़िद किए जाएंगे। महकमा की जानिब से उम्मीदवारों से गुजारिश की गई है कि वो मुस्तनद और ऑफिशियल मालूमात के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in देखें। रियासत में मानसून की हरकत में कमी आने से यकुम जून से अब तक मामूल से 32% कम बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बंगाल की खलीज और बहरे अरब से आने वाली मानसून की दोनों शाखें कमज़ोर हैं। बारिश की कमी के सबब पटना समेत 7 ज़िलों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत के साथ भभुआ रियासत का गर्म तरीन मकाम रहा। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे ज़्यादा 12.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बीच महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में हल्की से वस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा के मुताबिक आइंदा कुछ घंटों में गोपालगंज, मशरक़ी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, नालंदा और शेखपुरा ज़िला में तेज़ हवा के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है। वहीं जमुई, समस्तीपुर, दरभंगा, बांका, नवादा और लखीसराय ज़िलों में भी कुछ मकाम पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल, सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 तक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट नोट कर सकते हैं, www.ilahabadhighcourt.in। और इधर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। इसके अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लें, www.ssc.gov.in पर। और इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4,500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त

0: संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लें, www.centralbank.bank.in पर। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

0: होने की उम्मीद है।
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक ही दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जल्द से जल्द संबंधों को और मजबूत करेगी। मनीष सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था।
3: वी आर नाउ कंसिस्टेंटली रैंकिंग इन दी
2: भारत आज

0: चुके शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात 53 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 डॉलर

0: हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म दिल से के फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं AR रहमान और अनुराधा पौडवाल की, गीतकार गुलजार और संगीतकार हैं AR रहमान।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 को, यानी कि आज दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-22-22-500 और 0612-40-26-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 यानी कि आज और समय

0: FIR at 90.
1: अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है फिल्म संगीत में। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म कसूर से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 यानी कि आज दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-22-22-500 और 0612-40-26-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 यानी कि आज और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म साया से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एम एम करीम।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी पटना से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में इस बार का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे 17 जून 2026 यानी कि आज दोपहर बाद 3:30 बजे से। आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0612-22-22-500 और 0612-40-26-349। रिकॉर्डिंग की तारीख 17 जून 2026 यानी कि आज और समय दोपहर बाद 3:30 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म सपने से। आवाजें हैं हरिहरन और साधना सरगम की, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपने संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम के 4:30 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी, आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ, बहुत गर्मी है।
2: इसीलिए हमने ऐसा बोला,
1: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है।
2: बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
1: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं अपने शहरों से महानगर

0: घरों से बाहर निकलते हैं तो
1: जी
0: हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं,
1: जी
0: जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
1: बिल्कुल
0: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज

0: करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते
1: जी
0: हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं तो जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं
1: बिल्कुल कर सकते
0: और
1: हैं,
0: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे, तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है। ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय, ममता जी, वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द। तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
0: किस तरह से प्रोत्साहित
1: जी
0: करते हैं,
1: बिल्कुल
0: खास तौर से बच्चों को, बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो
1: जी
0: नहीं आता है। ये तो
1: बिल्कुल
0: प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि
1: बिल्कुल,
0: अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं।
1: उसका उत्साह बढ़ा देते हैं।
0: तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं
1: बिल्कुल।
0: और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं।
1: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती है
0: हाँ, और
1: ना,
0: उसका असर क्या होता है ये भी
1: बिल्कुल
0: बताइए।
1: ये भी बात।
0: कहीं कहीं कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी
1: बिल्कुल
0: बता सकते हैं
1: जी।
0: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
1: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
0: पूरा मन उड़ेल देते हैं,
1: जी
0: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है। मन में जो सागर भरा हुआ
1: जी
0: वो
1: जी
0: गागर में उड़ेल देना है। तो
1: बिल्कुल
0: डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं।
1: जी
0: कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं।
1: बिल्कुल
0: अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है
1: बिल्कुल।
0: और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितना कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
1: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है ममता जी
0: ठीक है, तो
1: उनके।
0: मोबाइल की डायरी में एक
1: जी
0: नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: वो भी एक जरिया है, क्योंकि
1: लेकिन
0: आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
1: हाँ ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाले हैं साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
0: गीत
1: क्यों।
0: सुनते हैं और श्रोताओं को, क्योंकि इंतजार होगा गीत का और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी,
1: जी
0: तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना।

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए उसकी
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग लगा हुआ है कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में, तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियाँ फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी, और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 से यह दिवस किया था, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहां सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे

0: प्रदेश हैं जहाँ पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं
1: बिल्कुल। और
0: किसी न
1: ममता
0: किसी
1: जी,
0: रूप में।
1: जो जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते पेड़ गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीज़ों को हमें बनाना चाहिए।
0: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं,
1: जी
0: जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीज़र चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहाँ हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की
1: जी
0: दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियाँ या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता,
1: बिल्कुल
0: अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो
1: क्या
0: हमने
1: बात
0: कई बार पूछा भी लोगों से, तो
1: है।
0: उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं, और पानी एकदम स्वच्छ होता है
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती
1: ना
0: है,
1: के
0: जो एकदम
1: बराबर होती,
0: जहाँ पर
1: बिल्कुल
0: लोगों की पहुँच नहीं है वहाँ तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: आंगन
1: नहीं
0: वाले घर हैं
1: हाँ ममता
0: वहाँ हम
1: जी,
0: कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज़ होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह, रख दी, वो बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने,
0: हाँ,
1: इन सब के काम बहुत
0: बचपन
1: आता
0: में तो
1: था।
0: खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता
1: हाँ
0: था, छोटे
1: बिल्कुल
0: छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और ये कहा जाता
1: बिल्कुल
0: था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर
1: जी।
0: गया।
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे
0: हाँ,
1: तो उसे
0: तो
1: इकट्ठा कर
0: ये
1: लेते
0: जो
1: थे।
0: खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना
1: जी
0: चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहाँ उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल। और इन सब चीज़ों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
0: अभी
1: जिम्मेदार
0: अभी
1: हैं।
0: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना
1: जी जी
0: मंजरी
1: जी
0: जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में,
1: जी
0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है
1: होता ही
0: अमूमन,
1: होता ही
0: तो
1: जी
0: वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं। और ये कॉल एक महिला का था,
1: जी
0: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी
1: बहुत
0: बात है,
1: अच्छी बात है। सही
0: और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम एक गाना सुनवा दें अपने
1: जी
0: श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक
1: जी
0: पोशाक है,
1: बिल्कुल,
0: और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है,
1: बिल्कुल
0: साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप
1: बिल्कुल
0: क्या
1: खुल
0: करती
1: जाता है,
0: हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है। और उसमें देखते हैं, तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी, और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियाँ हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वही राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती हैं, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक के से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो हैं बेहद आकर्षक डिज़ाइन तैयार करते हैं, और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिज़ाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब
1: तो
0: काफी मेहनत लगती है,
1: मेहनत
0: और समय
1: लगती
0: भी
1: है,
0: लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है, और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते

0: और सुंदर गोल लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोमबी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है। हर तरीके के उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बनाई बना दी जाती है इन साड़ियों को।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि बड़े चटकलाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान
1: जी
0: है राजस्थानी बांधनी की।
1: बिल्कुल।
0: और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि
1: बिल्कुल।
0: क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ
1: बिल्कुल
0: फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
1: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है, और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है, और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदियाँ बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
0: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: साज श्रृंगार तो
0: वैसे
1: बहुत जरूरी है।
0: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये
1: बिल्कुल
0: बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं,
1: जी।
0: तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है।

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं।

0: सखी सहेली कार्यक्रम।
1: जी
0: और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
1: बिल्कुल डायरी।
0: डायरी लिखना एक कला भी है, और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन
1: बिल्कुल
0: हल्का हो जाता है। और एक फायदा और होता है
1: जी
0: कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी, पढ़ेगी, तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी,
1: बिल्कुल
0: और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं, तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो, तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और
1: डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने उस महीने आपने क्या चीज़ फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब
0: बिल्कुल
1: कुछ उसमें रहता
0: सूखा
1: है।
0: पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
1: बिल्कुल
0: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ
1: दुनिया भर
0: जाती
1: की
0: हैं। अब
1: बातें।
0: हमारी एक सखी हैं जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है, और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती हैं?
1: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में
0: लेकिन
1: डूब गई
0: अब
1: थी।
0: सवाल ये है कि
1: जी
0: क्यों नहीं लिखती हैं?
1: लिखना
0: लिखना चाहिए
1: चाहिए।
0: बिल्कुल। हाँ ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं
1: बिल्कुल
0: बाहर हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में
1: जी
0: हैं, विमान में हैं, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं। बोल के टाइप करने
1: बोल के
0: की भी
1: टाइप की
0: सुविधा है
1: जरूरत नहीं।
0: तो।
1: जी बिल्कुल। अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटा पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है। इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और श्राप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिखती
0: कहा
1: हूँ।
0: जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
1: बहुत
0: है,
1: ईमानदारी से इन्होंने लिखी ये
0: और
1: बात।
0: उसमें डायरी में
1: जी
0: जो भी बात लिखें सच लिखें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता।
1: नहीं।
0: कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता।
1: बिल्कुल नहीं होता,
0: सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
1: तभी तो
0: तो
1: उस समय
0: तभी
1: का पता
0: उसका
1: चलेगा कि
0: अर्थ होता
1: आपने
0: है।
1: जीवन में क्या
0: हाँ
1: बिताया।
0: अब
1: तो
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है,
1: बिल्कुल
0: कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
1: उसका अपना
0: तो
1: ही मजा
0: जो
1: है।
0: हौले हौले जज्बात
1: जी
0: निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं,
1: बिल्कुल। और हमारी
0: और
1: जी
0: डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखने मैंने मैंने 8th क्लास से शुरू किया था। मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और

0: आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक
1: भाई,
0: है ना?
1: अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा
0: जी
1: मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
0: नेम लिखते हैं
1: फिलहाल गाना
0: जी
1: सुनना
0: जी
1: चाहिए।
0: जो

0: तुझे।
1: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं। और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई।
2: करना पड़ेगा।
1: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
2: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
1: आपने लिखी है कभी?
2: तो ये बात तो बताई जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
1: उजागर, राज को राज रहने,
2: राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन अब वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी, और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
1: वो अभी भी आती है।
2: हाँ,
1: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का।

0: डायरी
1: अब
0: लिखने
1: तो
0: का और
1: खरीदनी
0: डायरी
1: पड़ेगी
0: डायरी तोहफे में देने का
1: जी। तब
0: भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है, कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन ज़रूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफ़र के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और
1: क्या
0: ये जो
1: बात है।
0: लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज़ कलम लेकर जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं
1: बिल्कुल
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीज़ें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: कई बार अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो
0: बिल्कुल
1: एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है। तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज़ को माइनस करते हैं। तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत ज़रूरी होता है
0: पढ़ाई की बातें
1: जी।
0: और गानों की बातें, संगीत की बातें, और तो और संगीत सरिता जो
1: जी
0: प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती,
1: जी
0: जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे
1: क्या बात है।
0: और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: क्या बहुत
0: तो
1: अच्छी सी बात।
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है। ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था, मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
0: प्रोत्साहन
1: प्रोत्साहन,
0: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन था आज।
1: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए, तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी
1: जी
0: है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहज लेती हूँ। ये तो दोनों
1: दोनों
0: सकारात्मक
1: चीजें
0: नकारात्मक दो
1: जी
0: पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं, देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है। हमारे साथी लिख रहे हैं, और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है

0: या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ हर के साथ होती है।
1: प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं
0: जी
1: कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज़ बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज़ सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता-पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की
0: जी,
1: व्यवस्था की जाती है ना, कि
0: बच्चों का
1: आप
0: उत्साह बढ़ जाता है उस तरह
1: जी
0: से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से
0: जी
1: महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज़ आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में,
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट,
1: जी।
2: हाँ
1: और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद
2: बिल्कुल,
1: कॉमेंट्री पेश करते हैं।
2: हाँ।
1: तो ये जो उसमें आप कॉमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कॉमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ था।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर,
2: पॉपुलर हुआ करता था उस समय, और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे,
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था वो।
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध
2: स्पेशली
1: भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: हाँ। तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए,
2: बिल्कुल
1: रोमांटिक सॉन्ग्स गाए,
2: बिल्कुल,
1: और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस सही।

0: सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
1: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर
0: हाँ
1: बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं
0: वो,
1: पूछता है।
0: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम, कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं जाता, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस, मेरे ख्याल से, उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है,
1: जी जी
0: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है। और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम।
1: रास्ते में है अभी तो।
0: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी
1: पढ़ाई
0: नहीं।
1: मिलती कैसे आप?
0: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था।
0: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
1: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब तो अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
0: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट,
1: जी
0: वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप
1: जी
0: वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका
1: गया
0: मिले
1: हूँ मैं।
0: आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या,
1: जी
0: मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद, कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
0: हाँ वो है।
1: अक्कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम, उसका सामना करने बड़ा कतराते हैं, कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे, हमको, कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके, हाईवे पे कहीं गाड़ी रोक के, फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
0: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, तो एक गाना तो बन गया,
1: कौन सा
0: पल
1: है?
0: पल दिल के पास तुम रहते हो।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
0: फिल्मों के तो खैर मुझे
1: हाँ
0: नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत है।
1: आइए सुन।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राव जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूँ। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे, उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और

0: क्योंकि वो गांव में रहते थे, तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज़्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहाँ से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहाँ से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहाँ पे थिएटर करते थे लोग और मैंने उनसे पूछ लिया है यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहाँ यहाँ लिखा है ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहाँ से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूँ तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊँ, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाए, पिताजी खुश हो जाए। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता है ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार ये अब तक की बहुत बड़ी गलती की है लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
1: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
0: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी मुझे, सिर्फ ये था यार मैं
1: कहाँ
0: क्यों,
1: फंस
0: ये
1: गया?
0: बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था, वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी 1 दिन 2 दिन और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में, मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है। तो वहां से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा।
0: कुछ होना, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी, मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे
1: वाह
0: कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी

0: कभी तो हंसाए।
1: विजय भाई, अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
2: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रेपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रेपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रेपेट्री का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगें और जाएं कहाँ, सड़क पर तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया है, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
2: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीज़ें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की दूसरी सभा। हमारी सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। कार्यक्रम मनोरंजक भी होंगे और जानकारी से भरे हुए भी होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युव वाणी से। आइए सुनिए कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। कार्यक्रम चल रहा है युववाणी और मैं हूं मुर्शिदुल खैर, और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट निशा।
1: निशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। हर बार की तरह आज फिर हम लेकर आए हैं कुछ नई जानकारियाँ, कुछ प्रेरक बातें और कुछ ऐसे विषय जो हम सभी के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे प्रिय सेगमेंट प्रेरक पंक्ति से। कुछ शब्द भले ही छोटे हों, लेकिन उनमें सोच बदलने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की बड़ी ताकत होती है।
1: क्या बात कही है आपने मुर्शिद। और दोस्तों, इसके बाद आज की बात में चर्चा होगी उत्कल मणि गोप बंधु दास की पुण्यतिथि पर। जानेंगे उनके जीवन, उनके विचारों और समाज के प्रति उनके योगदान के बारे में।
0: तो दोस्तों, साथ ही बात करेंगे विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की। यह अवसर हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का संदेश देता है।
1: और दोस्तों, चूंकि आज है बुधवार, तो हमेशा की तरह हर बुधवार हम लेकर आते हैं घूमता माइक्रोफोन।
0: और कार्यक्रम के अंत में रहेंगे स्पोर्ट्स अपडेट, जहां खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा की जाएंगी।
1: और साथ ही होंगे कुछ रोचक तथ्य जो आपको जानकारी से भर देंगे।
0: इतना ही नहीं साथियों, कार्यक्रम के बीच बीच में गानों का भी सिलसिला जारी रहेगा।
1: तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कुछ समय हमारे साथ बने रहिए।
0: तो निशा, क्यों ना प्रोग्राम की शुरुआत एक गाने से की जाए।
1: क्या बात कही है मुर्शिद आपने, और ये भी कोई पूछने वाली बात है भला।
0: बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी गीत। इस गीत के बाद हम सुनेंगे आज की प्रेरक पंक्ति।

0: तो आप सुन रहे थे यह गीत जिद फिल्म से, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। तो दोस्तों अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के उस विशेष खंड का जिसका उद्देश्य केवल कुछ पंक्तियाँ सुनाना नहीं बल्कि विचारों को नई दिशा देना है। हम बात कर रहे हैं प्रेरक पंक्ति की।
1: जी हाँ साथियों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें किसी बड़े उपदेश की नहीं, बल्कि कुछ सच्चे और सकारात्मक शब्दों की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्द जो हमें आगे बढ़ने का साहस दे और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रहने की प्रेरणा दे।
0: तो दोस्तों इसी सोच के साथ प्रस्तुत है आज की प्रेरक पंक्ति।
1: सपनों को आंखों में बसाए रखना, सपनों को आंखों में बसाए रखना, हौसलों का दीप सदा जलाए रखना, राह में मुश्किलें अगर आए हजार, कदमों को फिर भी आगे बढ़ाए रखना। वक्त बदलता है ये याद रखना, खुद पर विश्वास हमेशा बनाए रखना, मेहनत की हर बूंद रंग लाएगी, मंजिल को दिल के करीब बनाए रखना।
0: वाह निशा, निश्चय ही आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म साजन से, ये अलका याग्निक की आवाज थी।
1: दोस्तों, अब समय है हमारे कार्यक्रम के उस खंड का जिसमें हम चर्चा करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों और विषयों की जिन्होंने समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी। आज की बात में हम स्मरण कर रहे हैं उड़ीसा के महान सपूत, समाजसेवी, शिक्षाविद, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार उत्कल मणि गोपबंधु दास को उनकी पुण्यतिथि पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, गोपबंधु दास का नाम केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे देश में सेवा, त्याग और राष्ट्र प्रेम के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्हें उत्कल मणि अर्थात उड़ीसा का रत्न कहा जाता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति अपने संकल्प और सेवा भावना से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: बिल्कुल, गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी जिले के सुवांडो गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और लोगों की सहायता करने की भावना थी। आगे चलकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन उनका मन समाज सेवा में अधिक रमता था।
0: जी हाँ, निशा सही फरमाया आपने। कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख और सुविधाओं से अधिक महत्व समाज और देश की सेवा को दिया। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और सूखे के समय वे स्वयं लोगों की सहायता के लिए आगे आते थे। गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें आम लोगों के बीच बेहद प्रिय बनाती थी।
1: मुर्शीद, गोपबंधु दास का शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: जी हाँ बिल्कुल, उनका मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने सत्यवादी में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की, जहाँ विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है।
1: शिक्षा के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता को भी समाज जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने समाज नामक समाचार पत्र की स्थापना की, जो आगे चलकर उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण आवाज बना। इसके माध्यम से उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सामने रखा और स्वतंत्रता तथा सामाजिक जागरूकता का संदेश भी फैलाया।
0: गोपबंधु दास एक कुशल लेखक और कवि भी थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानवीय संवेदना और सामाजिक चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने साहित्य को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का साधन बनाया।
1: 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, आदर्श और समाज के प्रति समर्पण आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी स्मृति में आज भी उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है।
0: उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें

0: उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प करते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की महानता उसके जीवन की लंबाई से नहीं बल्कि उसके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों से आंकी जाती है, और गोपबंधु दास का जीवन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।
1: क्या बात कहा है आपने मुर्शिद। तो दोस्तों, कार्यक्रम का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आइए सुनवाते हैं आपको एक और फिल्मी गीत।

0: श्रोता, आप अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा फिल्मी गीत फिल्म बॉर्डर टू से। दोस्तों, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल पर्यावरण से ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। हर वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल निशा, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार हैं। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मरुस्थलीकरण आखिर होता क्या है।
0: मरुस्थलीकरण का अर्थ है उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे अपनी उत्पादकता को खो देना। जब भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो पेड़ों की कटाई होती है, जल का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है या मिट्टी का क्षरण होता है, तब भूमि बंजर होने लगती है। यह प्रक्रिया ही मरुस्थलीकरण कहलाती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और जब भूमि की उर्वरता कम होती है तो उसका सीधा असर कृषि, जल संसाधनों और लोगों की आजीविका पर पड़ता है।
0: जी हाँ, वही सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। इससे जल की कमी हो जाती है, फसलें प्रभावित होती है और कई क्षेत्रों में पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो जाता है।
1: तो दोस्तों, आज दुनिया के अनेक देश भूमि संरक्षण और जल संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और भूमि संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।
0: यह केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब अपने स्तर पर भी छोटे-छोटे प्रयास कर सकते हैं।
1: जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना।

0: वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और मिट्टी के संरक्षण के उपाय अपनाना।
1: साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का विषय नहीं है, यह हमारी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए।
0: निशा, एक पेड़ लगाने या पानी की बचत करने जैसा छोटा कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
1: बिल्कुल मुर्शिद, जब लाखों लोग छोटे छोटे प्रयास करते हैं तब उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसीलिए उसका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है।
0: तो दोस्तों, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस हमें यही संदेश देता है कि यदि हम आज अपनी धरती की रक्षा करेंगे तो कल हमारी धरती हमारी रक्षा करेगी।
1: क्या बात कही है आपने। तो दोस्तों, आइए इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि जल, भूमि और पर्यावरण के संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।
0: क्योंकि हरी भरी धरती ही स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की पहचान है।
1: इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी गीत। इस गीत के बाद हम रुख करेंगे घूमता माइक्रोफोन की ओर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा फिल्मी गीत स्वदेश से। दोस्तों, आज है बुधवार और हर बुधवार को हम लेकर आते हैं घूमता माइक्रोफोन। इसी श्रृंखला में आज फिर हम लेकर आए हैं घूमता माइक्रोफोन, जहां हम सैर करेंगे गोलघर का और जानेंगे वहां के कुछ पर्यटकों से गोलघर के बारे में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा फिल्मी गीत स्वदेश से। दोस्तों, आज है बुधवार और हर बुधवार को हम लेकर आते हैं घूमता माइक्रोफोन। इसी श्रृंखला में आज फिर हम लेकर आए हैं घूमता माइक्रोफोन, जहां हम सैर करेंगे गोलघर का और जानेंगे वहां के कुछ पर्यटकों से गोलघर के बारे में। आइए सुनते हैं आज का घूमता माइक्रोफोन।
1: साथियों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। आज हम लोग पहुंचे हैं पटना के गोलघर में। पटना का गोलघर ऐतिहासिक है और हमारी विरासत है। इसे जैसा कि आप जानते हैं, अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, बाद में इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया। आइए जानते हैं गोलघर के बारे में, यहाँ जो मौजूद गार्ड हैं उनसे कि उनका अनुभव क्या रहा, वो हाल के वर्षों में क्या देखे। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें आप।
2: मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, पुनपुन थाना के रहने वाले हैं, गाँव पर बागरपुर। उसमें स्कूली बच्चे आते हैं, घूमते फिरते हैं और इसीलिए पार्क है, झुलवा है, एंजॉय अपना बच्चा घुमाने फिराने के लिए।
1: कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप और कैसा अनुभव अभी तक का रहा है आपका?
2: अभी तो हमको 2 महीना हुआ है, 2 महीने से अभी ड्यूटी कर रहे हैं। 2 महीने में यह बच्चे उच्चे घूम रहा था।
1: कितना टिकट है और जो बच्चे आते हैं उन लोग उत्साह किस प्रकार का देखते हैं आप?
2: 10 रुपये टिकट है, घूमने फिरने के लिए खुलता है तो।
1: पार्क का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा दिखाई पड़ रहा है कि उसमें और भी ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में क्या कहें?
2: ध्यान तो देने ही चाहिए सर, ताकि इधर उधर बच्चे गंदगी भी थोड़ा मना हो जाता है तो ऐसी करते हैं, इसलिए ध्यान तो देना ही पड़ता है। जरा बच्चा के आता है, स्कूल में बच्चा आते हैं लेके आते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसी पर इसे गोलघर घूमिए फिरिए, झुलवा है, झूलिए, घूम लीजिए।
1: लोगों की सुविधाएं बढ़ाई जाए, पर्यटक ज्यादा आए, इसके लिए यहाँ पर और क्या करने की आवश्यकता है?
2: यदि रेजर लाइट शो चालू होने वाला है, बोले सर के 2 महीना में चालू कर दिया जाएगा रेजर लाइट, 50 रुपये टिकट होता है।
1: मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सीढ़ियों पर अभी ग्रिल लगा है और ये शायद 2017 के आसपास से बंद है, इसका भी कुछ वजह है और ये कब तक शुरुआत होने की उम्मीद है, कुछ जानकारी है आपको?
2: ये सर तो बोले कि 2017 से बंद है, ऐसा सीढ़ी भी डैमेज भी है, रिपेयरिंग भी करना है, इसीलिए बंद कर दिया गया है। कुछ दुर्घटना हो गया इसलिए सरकार भी बंद कर रखी
1: है। आपका हमसे बातचीत करने के लिए
2: थैंक यू सर।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आज हम लोग आए हुए हैं पटना के गोलघर में। और यहाँ गोलघर आने के बाद देखिए कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, तो इन्हें देखने के बाद हमें अपने बचपन की वो दिन याद आ गए। तो इन लोग के साथ एक सर हैं, हम सर से जानेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हुए हैं और बच्चों में कितना कुछ उत्साह है।
4: जी, मेरा नाम धनंजय कुमार गुप्ता है, मैं UMS मऊ धनेशपुर विद्यापति नगर से विद्यालय परिवार की ओर से परिवार बन के लिए बच्चों के लेके आया। मैं इन बच्चों को अभी विज्ञान भवन पूरा अच्छा से घुमाया है और विज्ञान के बारे में वहाँ बताए हैं। फिर हमारा ये ऐतिहासिक धरोहर जो गोलघर है, जो कभी 1770 में अस्तित्व में आया था, 1786 में सर गोल्डस्टोन ने इनको अनाज को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, ताकि लोगों को अकाल पड़ने पर अनाज की पूर्ति किया जाए। उन धरोहर को, इस गोलघर के धरोहर को इन बच्चों से रूबरू कराने आए हैं कि कैसे आज हम विज्ञान के बदौलत अच्छी फसल उगा करके आज हमारी जनसंख्या 3 गुनी बड़ी हो गई, फिर भी हमें खाने का कम से कम लाला नहीं पड़ रहा है। नहीं तो अंग्रेजों के जमाने में वक्त वक्त पर अकाल पड़ता था, लोग अनाज के बिना भूखे मर जाते थे, भोजन के बिना भूखे।
3: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और पर्यटन स्थल का कितना बड़ा केंद्र है आपके नजर से, ये किस क्या देखते
4: जी? सबसे बड़ी बात कि हमारा देश गुलाम था और उस समय में अंग्रेजों का शासन था, उस समय में अंग्रेजों की अच्छी नीति नहीं होने के कारण यहाँ से जो भी कमाई होता था, इनकम होता था, वो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज लोग अपने यहाँ ले जाते थे और यहाँ के जनता पर कम ध्यान देते, जिसका नतीजा क्या, और किसान पर अधिक लगान लगाया जाता, लगान अधिक लगाने के कारण, चूंकि हमारी जो फसलें हैं वो वर्षा आधारित थी, वर्षा अच्छी हुई तो फसलें अच्छी होती थी, अन्यथा हमारी फसलें नहीं होती थी। फसलें खराब होने की भी स्थिति में अंग्रेज लोग लगान देना ही पड़ता था, जिसके कारण किसान को भूखों मरना पड़ता था। तो इसी को संगम अकाल से बचाने के लिए और इस ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने के लिए बच्चों को यहाँ हम लाए हैं और बच्चों को रूबरू करा रहे हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे दोस्तों और जानेंगे इन बच्चों के बारे में कि क्या कुछ इनका अनुभव रहा और कितना मजा आया इनको गोलघर घूमने में। अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, मैं यू

0: स्मॉग धनेशपुर विद आपके स्कूल साल।
1: अच्छा अंजलि, आप यहाँ घूमने आई तो आपको कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा।
1: क्या कुछ देखी आप गोलघर में?
0: गोलघर में यही देखा कि अंग्रेजों ने पहले अनाज रखने के लिए बनाया, जो अनाज सुरक्षित रह सके।
1: आपको मजा आया घूम के?
0: हाँ।
1: कहेंगे गोलघर के बारे में, आप घूमी तो आपको कैसा लगा, क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ पे गोलघर में आई तो देख के?
2: हाँ, हमें गोलघर में घूम के बहुत अच्छा लगा। और विज्ञान भवन में गए थे ना, वहाँ पे पार्क था, वहाँ पे हम झूला झूले और खूब सारा मस्ती की। और विज्ञान घर में हमने बहुत सारा कुछ देखा, साइकिल चलाया और फिर से टीवी देखे, तारा मंडल देखे।
3: श्रोताओं, हमारे साथ एक और महिला शिक्षिका जुड़ चुकी है, वो अपना अनुभव साझा करेंगी गोलघर में आकर के उन्हें कैसा लगा। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
4: मेरा नाम सारिका पदार है, मैं UMS कन्या साहित्य विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर से हूँ, विद्यालय के स्कूल के तरफ से आई हूँ।
3: जी मैम, तो आज आप बच्चों को लेकर के आई, कितने बच्चे आए हैं और आपका अनुभव गोल घर में आकर के कैसा रहा?
4: 28 बच्चे के साथ मैं आई हूँ। आज से पहले 2000 में आई थी तो मैं छत उत पे खूब घूमी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है की छत उत डैमेज हो गया, जिस वजह से अब मना हो गया, ताला वाला बंद है, फाउंडेशन लगी हुई है क्या, जब ताला लगी तो हम लोग ऊपर जा नहीं सकते, नीचे घूम जाए तो अच्छा ही फील महसूस हो रहा है।
3: क्या यहाँ पर आपको क्या लगता है, कैसी व्यवस्था है पीने का पानी का? व्यवस्था
4: पानी का देखे ही नहीं, पानी तो है ही नहीं।
3: अच्छा,
4: चापाकल तो है ही नहीं,
3: ये व्यवस्था आपको?
4: मैंने तो नजर दौड़ाई तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
3: ओके, तो इसमें आप सुधार देखना चाहती हैं?
4: हाँ।
3: उम्मीद करते हैं कि जब आप अगली बार आए तो ये सब सुधार यहाँ देखने को मिले, ये सब सुधार।
4: पानी की तो व्यवस्था होनी ही चाहिए।
3: बिल्कुल, शौचालय है, पेयजल है, ये सब बहुत जरूरी है।
4: शौचालय भी किधर है?
3: नहीं है ना?
4: जी नहीं, कुछ तो नजर आए, बस कैंपस है खुला खुला सा घूमने के लिए।
3: हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: श्रोताओं, आइए हम जानते हैं यहाँ जो गोलघर में एक और हमारे साथ युवा जुड़ी है तो उनके अनुभव को जानेंगे, क्या कुछ उन्होंने पहले देखा और अभी के समय में उनको क्या नजर आया, तो आइए जानते हैं। मैम, आप अपना परिचय दीजिए।
5: आई एम अर्चना कुमारी और मैं मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और हम लोग आज यहाँ गोलघर देखने आए हैं जो पहले से बहुत अच्छा है और ज्यादातर संख्या में यहाँ पर युवा और स्टूडेंट लोग देखने आ रहे हैं।
1: तो आप कभी बचपन में भी आई है यहाँ? पहली बार आई है।
5: जी जी।
1: अच्छा, तो पहली बार आई है तो आपको कैसा लगा, कि आपने कभी इसके बारे में कभी सुना था कि किस तरह का गोलघर है?
5: जी,
1: और
5: जी,
1: अभी
5: जी।
1: आप आए तो क्या कुछ उनसे अलग लगा आपको?
5: नहीं, जो सुने थे उससे और अच्छे लगा है हमको।
1: अच्छा
5: जी,
1: तो आपको ऐसा लगता है कि सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, पर्यटन अधिक मात्रा में आ सकते हैं?
5: जी जी।
1: और
5: जी,
1: आना चाहिए युवा श्रोताओं को कुछ जानने के लिए या फिर देखने के लिए है?
5: जी जी।
1: सीढ़ी से ऊपर चढ़ा? यहाँ पे तो सीढ़ी भी बना हुआ है।
5: नो, सीढ़ी खुला रहता तो हम लोग जाते, लेकिन ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर होगी तो हम लोग जाते।
1: दोस्तों, आइए अब हम जानेंगे यहाँ एक और जो पर्यटक घूमने आए हैं तो उनके अनुभव को जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो मैम, आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए युवा श्रोता।
6: मेरा नाम जया शर्मा है, मैं राजा बाजार से हूँ, बेली रोड, और यहाँ मैं दूसरी बार आ रही हूँ घूमने के लिए।
1: अच्छा, इसके पहले भी आप आई थी?
6: हाँ, आ चुकी हूँ, जब ये पार्क नहीं था, यहाँ पे काफी कुछ नहीं था तभी आ चुकी हूँ मैं।
1: तो अगर आप पहले आई हैं और अभी जो घूमने आई हैं तो दोनों के बीच में आपको क्या फर्क लगा, पहले से कुछ सुधार हुआ है या?
6: हाँ, काफी कुछ सुधार हुआ है यहाँ, पहले कुछ खास नहीं था, गोलघर भी कुछ अच्छा खासा नहीं था, टूटा फूटा था।
1: अच्छा, आप गोलघर की सीढ़ियों पे चढ़ी?
6: हाँ, जब आई थी मैं वहाँ तो 2-3 बार मैं अप डाउन की हूँ।
1: जो यहाँ घूमने आई है तो उनके अनुभव को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम, आप अपने बारे में बताइए।
7: तो मेरा नाम पुष्पा गुप्ता है, मैं जगदेवपद से आई हूँ और यहाँ मैं फर्स्ट बार आई हूँ।
1: पहली बार यहाँ पे आई हूँ। तो आप पहली बार जब यहाँ घूमने आई तो क्या कुछ आपको खास लगा यहाँ, कितना अच्छा लगा आपको गोलघर के बारे में?
7: अच्छा तो लगा।
1: कितने लोग यहाँ पे घूमने आ रहे, लोगों को क्या अच्छा लग सकता है, जो लोग आपकी बातों को सुने तो घूमने आए यहाँ पे?
7: हाँ, यहाँ लोग आते हैं, वही स्कूल से बच्चा लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, और ऐसे अपना फैमिली के साथ भी लोग आते हैं घूमने के लिए।
1: और आपको अच्छा लगा यहाँ?
7: हाँ, हमको अच्छा लगा, फर्स्ट बार आए हैं लेकिन फिर भी अच्छा लगा।
1: चलिए, थैंक यू। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं, हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुकी है जो की भी अनुभव को जानेंगे।
8: मेरा नाम काजल हुआ और मैं वीडियोज बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारा चैनल भी चलता है।
1: अभी जो गोलघर घूमने आई हैं तो पहली बार आई हैं या इसके पहले भी आपने कभी आया?
8: मैं फर्स्ट टाइम आई।
1: कैसा लगा आपको गोलघर घूमने में?
8: काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। मैं यहाँ एक दो पार्क में भी गई हूँ तो वहाँ पे वीडियो शूट में थोड़ा बहुत इशू आती है, और हम लोग का तो काम है यहाँ वीडियो शूट करना, तो यहाँ आई हूँ तो काफी अच्छा लग रहा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, फ्रेंडली मैं शूट कर रही हूँ और यहाँ जो पब्लिक है उनका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो अच्छा लग रहा है।
1: आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरह के लोग आ सकते सकते हैं या घूम सकते हैं, जो कुछ जानकारी मिल सकती है उन्हें, हमारे ऐतिहासिक चीजों से रूबरू हो सकते हैं।
8: नहीं, मैं यही कहूंगी कि जिनको भी ऐतिहासिक चीज देखना है या जानना है उनके बारे में, तो यहाँ गोलघर है तो

0: आ भी सकते हैं, अगर आपको वीडियो भी शूट करना है तो भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आना है तो भी आ सकते हैं। मुझे तो काफी अच्छा लगा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ।
1: तो दोस्तों अभी हम गोलघर के गेट के बाहर आ चुके हैं और हमारी मुलाकात हुई है यहाँ के गार्ड से जो टिकट चेक करते हैं। आप यहाँ पर गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन की आवाज सुन पा रहे होंगे, हॉर्न की आवाज सुन पा रहे होंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें और कब से यहाँ सेवा दे रहे हैं आप?
2: नवल महतो मेरा नाम है, शिवहर जिला का रहने वाले हैं और 2 साल से हम यहाँ सेवा दे रहे हैं।
1: तो कितने लगभग पर्यटक आते हैं, संख्या लगभग कितनी?
2: लगभग 1000 पर्यटक रोज यहाँ आते हैं, 1000।
1: और उनका जो आयु वर्ग है, किस उम्र के लोग ज्यादातर आते हैं?
2: हर वर्ग के लोग आते हैं, बच्चा लोग भी, सियाना भी, बूढ़ा भी, हर।
1: तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए, वो क्या आप देख रहे हैं और उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है या पर्याप्त है वो?
2: नहीं, वो तो उसमें सुधार करना है। और अभी तो जो है पानी है, लेटरिन बाथरूम ये सब है, फिर अभी काम लगने वाला है, इसमें लग रहा है।
1: तो ये सीढ़ियाँ बंद है? ये
2: सीढ़ियाँ तो बंद है, 2017 से कोर्ट आदेश बंद करके इसको बंद किया है, उसी समय से ये बंद हो गया है।
1: तो इसके लिए भी कुछ प्रयास हो रहा है कि सेफ्टी?
2: नहीं, सीढ़ी नहीं खुलेगा कभी नहीं, सीढ़ी सदा के लिए लॉक हो गया, वो डैमेज भी हो चुका है, मरम्मत भी हुआ है, खुला है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है।
1: तो हमारे श्रोताओं से क्या अपील करेंगे, गोलघर वो आए, यहाँ क्या देखने को मिलेगा?
2: यही है, ऐतिहासिक घर है, विश्व में पूरे वर्ल्ड में वन पीस है, यही सब चीज देखना है। 10 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है, और क्या है, 300 बरस पुराना है, 100 बरस में तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग नीचे चला जाता है। तो इसमें न छड़ है, न सीमेंट है, कुछ नहीं है, ये सुर्खी पहले के कुछ से बना है जिसके लिए ये है।
1: तो बिल्कुल आपने जैसा कि बताया कि इतनी पुरानी इमारत है, ऐतिहासिक धरोहर है,
2: 1786 में इसका आविष्कार हुआ है, माने चालू है उस समय।
1: ठीक है, थैंक यू।
3: दोस्तों घूमता माइक्रोफोन में आज हम गोलघर का हमने सैर किया और हम बातचीत किया हमसे आकाश और प्रिया ने, वहां के कई पर्यटकों से। तो दोस्तों अभी सुनाते हैं आपको एक और फिल्मी गीत।

0: क्या खूबसूरत गाना था दोस्तों। अभी आपने सुना ये फिल्मी गीत फिल्म गोलमाल 3 से आवाज थी शान और अनुष्का मनचंदा की। दोस्तों आइए अब नजर डालते हैं खेल की दुनिया में और जानते हैं क्या कुछ हलचल चल रहा है खेल जगत में।
1: तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप की, जिसकी मेज़बानी इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इस विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप बन गया है।
0: जी हाँ, और विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों में कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि नॉर्वे ने भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है।
1: वहीं फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी ने विश्व कप में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने अर्जेंटीना के लिए अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है।
0: इसके साथ ही अगर बात करें भारतीय महिला टीम, 17 जून को टूर्नामेंट में तीन महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे। यह आईसीसी मुकाबला टी20 विश्व कप 2026 रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। दुनिया की 12 टीमें इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला कर रही है।
1: वहीं दिन का तीसरा और अंतिम मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच रात 11 बजे खेला जाएगा। यह मैच भी दोनों टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
0: टूर्नामेंट के हालिया मुकाबलों की बात करें तो श्रीलंका ने गत विजेता न्यूजीलैंड को हराकर बड़ा उलटफेर किया है, जबकि इंग्लैंड ने भी आयरलैंड को 4 विकेट से पराजित किया है।
1: तो दोस्तों महिला T20 विश्व कप का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में कई शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे।
0: तो साथियों स्पोर्ट्स अपडेट में इतना ही। आइए फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक और फिल्मी गीत।

0: श्वेता, अभी आप सुन रहे थे एक प्यारा सा फिल्मी गीत फिल्म जुर्म से। दोस्तों, अब समय हो गया है एक ऐसे सेगमेंट का जिसका आपको हमेशा ही इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं रोचक तथ्यों की। तो मुर्शीद, सुनाइए हमारे साथियों को आज का रोचक तथ्य।
1: बिल्कुल निशा, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? यह एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। उसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था।
0: क्या बात है मुर्शीद, आपने अच्छा किया जो इसे रोचक तथ्य में शामिल किया, क्योंकि मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान बढ़ना भी तो जरूरी है।
1: जी हाँ, एकदम सही कहा आपने। इसी बात पर एक और सुनिए, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली चमकने के बाद गरज क्यों सुनाई देती है? दरअसल प्रकाश की गति ध्वनि से कहीं अधिक होती है, इसलिए चमक पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है।
0: वाह, ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। दोस्तों, फिलहाल रोचक तथ्यों का सिलसिला यही खत्म होता है। अगली बार हम फिर कई रोचक तथ्यों को लेकर आपसे आपके सामने प्रस्तुत होंगे।
1: इसी के साथ दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी भी इशारा कर रही है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का।
0: जी हाँ दोस्तों, और जाना भी जरूरी है ताकि हम फिर से इसी ऊर्जा उत्साह के साथ लौट सके आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युवानी को लेकर।
1: दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? या कोई भी सुझाव हो, आप हमारे यार पटना पर हमसे जुड़ सकते हैं।
0: साथियों, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा मेल आईडी है feedback@airpatna.gmail.com। और साथियों, इसके साथ ही साथ अगर आपको भी कोई गाना बजवाना हो, आपका कोई भी पसंदीदा गाना हो, आप हमें जरूर लिख भेजें। हम कोशिश करेंगे कि उसे अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करें। और इसी के साथ मुझे निशा और मेरे को होस्ट,
1: मुर्शिदुल खैर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: परिक्रमा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी पटना है। आइए अब सुनिए खेल परिक्रमा।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है साप्ताहिक खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं अल्पी एक बार फिर से हाजिर हूँ खेल जगत की ढेरों जानकारियों के साथ। श्रोताओं, बीता सप्ताह खेल जगत की ढेरों गतिविधियों से भरा रहा। कुछ खेल तो आगे के आने वाले सप्ताह में भी जारी रहेंगे, जिनमें फीफा विश्व कप 2026, महिला T20 वर्ल्ड कप, नेशंस कप और भी कुछ खेल शामिल हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कार्यक्रम में बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं खेल गतिविधियां में बीते सप्ताह हुए खेलों के बारे में। साथ ही जान लेंगे कि आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे रोमांचक खेल फीफा वर्ल्ड कप 2026 से, जो 12 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। अब तक के सबसे रोमांचक मुकाबलों की अगर बात करें तो लियोनेल मेसी की हैट्रिक से अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। वहीं आइजवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से मात दी है, जबकि स्पेन और केप वर्ड के बीच हुआ मुकाबला ड्रॉ पर खत्म होकर एक बड़ा उलटफेर साबित हुआ। लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ल्ड कप करियर की पहली हैट्रिक जड़ी और टूर्नामेंट में सबसे उम्र दराज हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर का मैच भी कुछ हटके रहा। आइवरी कोस्ट ने एक करीबी मुकाबले में इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। स्पेन बनाम केप वर्डे की अगर बात करें तो यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा चौंकाने वाला मुकाबला रहा। स्पेन, जो कि फीफा रैंकिंग 2 की टीम है, महज 5 लाख की आबादी वाले छोटे से देश के वेड ने, जो कि फीफा रैंकिंग 64वां स्थान रखता है, पूरे मुकाबले में गोल करने से रोके रखा और मैच 0-0 के ड्रॉ पर खत्म हुआ। जापान बनाम नीदरलैंड्स की अगर बात करें तो 2-2 और ब्राजील बनाम मोरक्को 1-1 के बीच खेले गए मैच भी रोमांचक ड्रॉ रहे। वहीं बेल्जियम बीते दिनों बड़ी शर्मिंदगी से बाल बाल बचा। विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज बेल्जियम को 29वीं रैंकिंग वाली मिस्र के खिलाफ पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन मिस्र के आत्मघाती गोल और चौथा विश्व कप खेल रहे रोमेलु लुकाकू के प्रभाव ने उसे 1-1 की बराबरी दिला दी। मिस्र ने 76,775 दर्शकों की मौजूदगी में ग्रुप जी के इस मैच में शुरुआती बढ़त हासिल की। इमाम शकूर ने 19वें मिनट में बेल्जियम की रक्षा पंक्ति की चूक का फायदा उठाते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला गोल दागा। मैच का टर्निंग पॉइंट 66वें मिनट में आया, जब बेल्जियम के स्टार स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू को मैदान पर उतारा गया। मैदान पर आने के महज 23 सेकंड बाद ही दाहिने छोर से आए क्रॉस पर लुकाकू तेजी से गेंद की ओर बढ़े। उन्हें रोकने की कोशिश में मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हनी ने गेंद अपने ही गोल में पहुंचा दिया और स्कोर 1-1 हो गया। दो बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे को अपने पहले मैच में सऊदी अरब के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ मिला। उरुग्वे ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा और 29वीं बार गोल पर निशाना साधा, पर सयुदी गोलकीपर मोहम्मद ओवैस शानदार प्रदर्शन करते रहे। फीफा रैंकिंग में काफी पीछे होने के बावजूद सऊदी अरब ने उरुग्वे को कड़ी टक्कर दी और जीत के करीब पहुंचा दिया। सऊदी अरब को 41वें मिनट में अब्दुल्लाह अल अमरी ने बढ़त दिलाई। आखिरकार 80वें मिनट में मैक्सी अराउजो ने रिबाउंड पर गोल दाग उरुग्वे को हार से बचाया। तो अभी तक खेले गए फुटबॉल के मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं, इनमें काफी सारे खेल ड्रॉ पे रोके गए हैं। फीफा विश्व कप के इतिहास में बीता सोमवार का दिन अपने आप में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दिन 68 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ जब विश्व कप के एक ही दिन खेले गए 4 मुकाबले ड्रॉ रहे। इससे पहले 15 जून 1958 को ऐसा संयोग बना था, जब उस दिन खेले गए 8 मैचों में 4 मुकाबले बराबरी पर समाप्त हुए थे। इस नतीजे के बाद ग्रुप एच में स्पेन, केप वर्ड, उरुग्वे और सऊदी अरब चारों टीमों के खाते में 1-1 अंक हो गए हैं। और अब जानते हैं महिला T20 विश्व कप के बारे में। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में ग्रुप चरण में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड्स के साथ खेला जाएगा। भारत

0: अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 64 रनों से जीत चुका है। आज का मुकाबला बेहद ही खास है और आज शाम ये भारतीय समय अनुसार 7 बजे से खेला जाएगा। तो हमारी भारतीय टीम को, हमारी बेटियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं नेशंस कप की। कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेमसियामी के गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से हराकर FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के लगातार दूसरी जीत से 6 अंक हो गए हैं। भारत के लिए सलीम टेटे ने 33वें मिनट में गोल दागा, फिर जापान ने इसके 2 मिनट बाद ही गोल से स्कोर बराबर कर दिया। लाल रेमसियामी ने 49वें मिनट में गोल दागा जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। जापान ने अंतिम क्षणों में आक्रामक खेल दिखाया लेकिन भारत ने उसके हमलों को नाकाम करते हुए जीत हासिल की। यह मैच मिडफील्डर ज्योति के लिए भी एक यादगार अवसर था जिन्होंने सीनियर स्तर पर अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। भारत पुल ए के अपने आखिरी मैच में उरुग्वे का सामना करेगा जबकि जापान और अमेरिका इस ग्रुप में सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आपस में भिड़ेंगे। और अब स्क्वैश के बारे में जानते हैं। भारत की दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा लगातार 7 एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय एथलीट बनने जा रही हैं। 39 वर्षीय जोशना सितंबर 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका एशियाई खेलों का सफर बुसान 2002 में शुरू हुआ था और वह 5 पदक जीत चुकी हैं, जिनमें 2 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। जोशना ने कहा कि यह उपलब्धि उनके लिए गर्व की बात है। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। खेल भवन में आयोजित प्रथम गतका गोल्ड कप बिहार स्टेट चैंपियनशिप में पटना जिले की टीम चैंपियन बनी जबकि वैशाली की टीम उप विजेता। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार और समाज सेवी नीतू कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने संतुलन और आत्मरक्षा की तकनीकों का शानदार प्रदर्शन किया। मौके पर गतका एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष जगजीवन सिंह, जनरल सेक्रेटरी भोला कुमार थापा समेत अन्य लोग शामिल थे। तृतीय किलकारी बॉल बैडमिंटन प्रीमियर लीग के दूसरे दिन बालिका वर्ग में किलकारी ब्लास्टर्स ने किलकारी टाइटन्स को 31-35, 35-33, 35-26 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। ब्लास्टर्स की जीत में पूनम राजनंदिनी अपर्णा ने अहम भूमिका निभाई। वहीं बालक वर्ग में किलकारी लायंस ने किलकारी चैलेंजर्स को 35-25, 27-35, 35-31 से हराया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रहे समर कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया। बच्चों के साथ संवाद करते हुए क्रॉसवर्ड की बारीकियां, उसके महत्व तथा उसके विकसित होने वाली बौद्धिक क्षमताओं पर विस्तार से चर्चा की। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण ने कहा कि खेल प्राधिकरण का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों का शारीरिक विकास करना नहीं बल्कि तार्किक सोच, रचनात्मकता, भाषा दक्षता और समस्या समाधान की क्षमता का भी विकास करना है। खेल जगत की जानकारियों के बाद सुनते हैं योग प्रशिक्षक प्रीतम कुमार को। विषय है योग और खेल।
1: योग और खेल, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं योग प्रशिक्षक और वेलनेस कोच प्रीतम कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम सर। खेल जो होता है मुख्यतः उसमें शरीरों का भी व्यायाम अच्छा खासा हो जाता है और योग भी एक व्यायाम की पद्धति है, तो इन दोनों में किस तरीके से संबंध स्थापित किया जा सकता है और खिलाड़ियों को एक अभ्यास तो व्यायाम तो हो जाता है उनको दौड़ने का, उससे भी श्वास के संचालन में और उनके नियंत्रण में वो काबू पाते हैं, मगर योग के माध्यम से किस तरीके से और ज़्यादा उनमें निखार लाया जा सकता है?
2: 100% ये बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि खेल के प्रति अभी मैं जैसा देख रहा हूँ पटना के अंदर अभी खेल जो चल रही है और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है और काफ़ी बेस्ट चीज़ें चल रही है और काफ़ी लोग जो यंगस्टर हैं खेल के प्रति ध्यान दे रहे हैं और उसमें योग जो है बहुत बढ़िया किया जा रहा है। और खिलाड़ियों के लिए जैसा आपने पूछा कि क्या महत्वपूर्ण है, तो बताना चाहूँगा जो भी श्रोताएं खिलाड़ी अभी जो सुन रहे हैं, योग जो है ना आप लोगों के लिए लचीलापन, जैसे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अगर कहीं चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है जैसे स्प्रेन आ जाती हैं, क्रैम्प आ जाती हैं रनिंग में खासकर, तो उससे बचाने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑलवेज आपके कोच बोलते होंगे फोकस, ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो योग आपको इसमें बहुत ही मदद करेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो रोजाना अगर आप योग अभ्यास करते हो तो 20-30% तक आप अपने गेम में सुधार देख सकते हो। 20-30% बहुत बड़ा नंबर होता है। आप अपने खेल को इम्प्रूव करना चाहो तो योग इसमें काफ़ी मदद करेगा आपको।
1: जी, तो जैसा कि प्रीतम जी हम सभी जानते हैं कि जो भारत में भी जितने प्रकार के खेल

0: आयोजन हो रहा है उसमें योगासन को भी एक
1: हंड्रेड
0: खेल के रूप में लाया गया है।
1: राइट
0: पारंपरिक जितने भी खेल हैं हमारे उसको इसमें लाया गया है, उसमें मलखंब भी है,
1: हंड्रेड
0: योगासन भी
1: राइट
0: है।
1: राइट
0: तो कितनी भूमिका निभाता है, किन किन, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं
1: हंड्रेड
0: ठीक है,
1: परसेंट
0: या फुटबॉल खिलाड़ी हैं या तैराक हैं,
1: हंड्रेड परसेंट
0: उनको कौन कौन सा योग करना चाहिए जिससे वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं?
1: 100% फुटबॉल हो क्रिकेट हो, उसमें रनिंग आम है, दौड़ना धूपना और उसमें क्रैम्प आना जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो उसमें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। कौन कौन से आसन उनके लिए बेस्ट रहेगा ये हम जानते हैं, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी है ना, तो इसमें आपको धनुरासन, इसमें होता क्या है ना कि पेट के बल लेट के पीछे की तरफ हाथ ले जाकर अपने एंकल को पकड़ना होता है और धनुष की तरह अपने बॉडी को ऊपर खींचते हुए, एक खींचा हुआ धनुष जैसे रहता है ना वैसा बनाना होता है शरीर को। तो ये आसन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, बैक को इम्प्रूव करेगा। बॉलिंग जो करते हैं ना वो क्रिकेटर, तो उसमें उनकी शोल्डर की जो मोबिलिटी रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेंथ तो वो उनको इम्प्रूव करके देगा। वृक्षासन फोकस को बढ़ाएगा जो कि खड़े होकर एक पैर पे किए जाने वाला आसन है। इसके साथ ही त्रिकोण आसन होता है, पैर फैला के आगे की तरफ झुकना और साइड स्ट्रेचिंग होती है बेली की, उसमें दोनों पैर फैलाकर। तो ये सारे मुड़ाव और खिंचाव जो है ना उनके बैटिंग और बॉलिंग में बहुत मदद करती है। अगर बात किया जाए कि ऐसे ही फुटबॉल वाले जो प्लेयर होते हैं तो उसमें बकासना होता है, एक पैर वाले जो भी आसन है जिसमें संतुलन बना सकें, क्योंकि फुटबॉल बहुत संतुलन वाले गेम है, रनिंग के साथ उनको बैलेंस करना होता है और हर एक मूवमेंट में चेंज करना पड़ता है उनको। तो इसके लिए उनको ये जरूरी है कि वो ऐसा आसन करें जो कि पाँव के ऊपर खड़े होकर एक साथ एक पैर से हो जाए। प्राणायाम जरूरी है क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स को रेगुलर भागने पड़ते हैं, 90 मिनट्स का आई थिंक होता है उनका, और साथ ही ध्यान ताकि आप बॉल पर फोकस कर सको, ये सारी चीज़ें हैं।
0: तो योग जो है एथलीटों के मानसिक स्थिति में जो पॉजिटिवनेस है वो किस प्रकार से लाता है?
1: पॉजिटिविटी जब भी आएगा, जब आप इंटरनल ट्रैवल करोगे, इंटरनल मीन्स सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, अपने आप को जो समझ गया वो बाकी चीज़ों से एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रेम से अटैच हो पाता है। इसमें ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों चीज़ों को लेके चलते हैं हम लोग। आसन अभी मैंने बताया, प्राणायाम जैसा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं अगर वो करते हैं, तो इसके बाद ध्यान, इसकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, हर एक एथलीट को एकाग्रता, उनके गोल उनके फोकस होती है, तो ये सारी चीज़ें और संकल्प शक्ति चीज़ें वहाँ मेडल का एक अचीवमेंट का जो रहता है गोल उनका वो पूरा करेगा।
0: तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामान्यतः एथलीट जो होते हैं, हमारे खिलाड़ी होते हैं, वो अपना जो ट्रेनिंग करते रहते हैं उसी दौरान उनको चोट भी लगता है या खेल के दौरान ही चोट लग जाता है। तो क्या चोट से उबरने के लिए भी योग कारगर
1: हंड्रेड
0: है?
1: परसेंट जब भी चोट स्प्रेन आती है, एंकल मुड़ गया, तो उनके कोच उनको बर्फ़ सेकने को बोलते हैं, बहुत सारे तरह तरह के फिजियोथेरेपी करवाते हैं जिसमें भी योग होता है। तो योग एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम इसमें देखें तो सूजन कम करने के लिए विशेष रूप से कुछ आसन है जिसमें बहुत ही मोबिलिटी वाले एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें ऐसे एंकल में अगर चोट आ गया तो बहुत धीरे धीरे उसे रोटेट करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। तो हर तरीके के लोगों के लिए योग में है कुछ ना कुछ, ये सभी के लिए है। मांसपेशियों में अगर चीज़ें हो गई, क्या है, मांसपेशियाँ एक दूसरे पे चढ़ जाती है और वो चढ़ती है तो बहुत दर्द करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए शुरुआत में ही प्रिवेंशन किया जाता है, मीन्स आप फ्लेक्सिबल रहो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी। जोड़ों में जो होता है ना, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम्स बहुत, एथलीट को आपने सुना होगा कि एक टाइम में ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम आता है, तो उसमें कुछ आसन जैसे गौमुख आसन उसके लिए बेस्ट रहता है।
0: गौमुख आसन क्या है?
1: गौमुख आसन क्या है, ये बेस्ट है। गौ के मुख के जैसा अपने शरीर को बनाना पड़ता है, जिसमें आप पहले तो वज्रासन में बैठते हो, वज्रासन बैठना होता है जैसे दोनों घुटनों को मोड़ कर, लेकिन इस वज्रासन में क्या होता है, एक पैर पे बैठना होता है और दूसरा पैर उसके ऊपर होता है क्रॉस कर कर, और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में शरीर को सीधा रखकर हम बैठते हैं। यहाँ पे फोकस और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी पैरों की बहुत अच्छी होती है।
0: तो देखते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी दिनचर्या पूरी बनी हुई होती है कि सुबह को क्या करना है, दिन को क्या करना है, शाम को क्या करना है, खाना किस प्रकार से खाना है। तो योग इस दिनचर्या में किस तरीके से फिट बैठे?
1: ये चीज़ें हैं। हाँ, योग को आप किस टाइम करें, कैसे इस दिनचर्या में लेकर आएँ, लगभग एक योग शिक्षक का पॉइंट अभी हो रहे हैं शायद। अभी होता क्या है कि सारे जितने वर्कआउट वार्म अप खिलाड़ियाँ कर लेते हैं, वार्म अप के बाद वर्कआउट और फिर लास्ट में कूल डाउन का एक सेक्शन होता है उन लोग का, यानी शरीर को थोड़ा शिथिल करने का, ताकि जो भी मांसपेशियों पे दबाव पड़ा है, लैक्टिक एसिड्स जो रिलीज़ हुए हैं उनके पूरे शरीर में, उनको रिलीज कर सके, मांसपेशियों को रिलीज कर सकते, मानसिक रूप से शांत हो सके, उसके लिए वो लोग कूल डाउन करते हैं। योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि 10 मिनट का प्राणायाम, 15 मिनट का सूर्य नमस्कार, या फिर ध्यान अगर वो कर लेते हैं 10 मिनट, लास्ट में कुछ आसन जो बेसिक स्ट्रेचेज होते हैं

0: जिसमें भुजंगासन, पर्वतासन, ये सारे मार्जारी आसन, चक्रासन, साथ में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार कर लें तो लास्ट में इतना रिफ्रेशिंग सा हो जाता है कि कल के लिए वो फिर से तैयार हो जाते हैं।
1: कुल मिलाकर कहें प्रीतम जी, तो युवा खिलाड़ियों के लिए योग के क्या-क्या फायदे हैं?
0: ये बहुत बढ़िया सवाल है सर। तो विकास में जैसे कि हर एथलीट चाहता है कि मैं कुछ अलग करूं और कुछ अचीव करूं, तो हर लेवल पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ध्यान उनमें एकाग्रता पहले पहले देगी, और अंतर शक्ति जिसको बोलते हैं विल पावर, वो उसमें पहले तो आएगा। इसके बाद जैसे अगर कोई चोट वोट लगता है जिसमें पैर वैर मुड़ जाना, तो उसमें वो बहुत जल्दी प्रिवेंट कर जाएंगे, जिसे रिकवरी कहते हैं। ये विकास में जैसा मैंने बोला पॉस्चर में सुधार करते हैं। एक रनर्स को ना, जो रनर होते हैं या लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं, उनमें पॉस्चर मैटर करता है, उस पॉस्चर को सुधारेगा, क्योंकि ये योग जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। टीम वर्क में सुधार करेगा, क्योंकि योग सबके लिए स्टार्टिंग से बना हुआ है, सब कुछ जिस जो भी आना जो भी लेना चाहे योग से कुछ ना कुछ ले सकता है। वो भावना उनमें भी आती है, टीम वर्क का भावना आ जाता है अगर वो योग को करना शुरू करते हैं तो। और चोटों से जैसे मैंने बोला कि रोकथाम तो है ही, तो ये सारी चीज़ें हैं सर इसमें।
1: जी, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अष्टांग योग के जो यम, नियम,
0: नियम,
1: आसन,
0: आसन,
1: प्राणायाम,
0: प्राणायाम, प्रत्याहार,
1: प्रत्याहार हैं, इनसे खिलाड़ियों को बहुत ही अधिक फायदा हो सकता
0: हंड्रेड
1: है। उनका
0: परसेंट
1: मानसिक विकास हो सकता है, मानसिक
0: राइट,
1: संतुलन स्थापित हो सकता है, आत्मनियंत्रण वो कर सकते हैं,
0: 100%,
1: और किसी भी चीज़ पर फोकस्ड
0: वो
1: होकर
0: जरूरी, सबसे
1: अपने लक्ष्यों
0: जरूरी,
1: की प्राप्ति कर
0: हंड्रेड
1: सकते हैं।
0: परसेंट
1: प्रीतम जी, आप हमारे स्टूडियो आए और योग और खेल को एक दूसरे से जोड़ा, और खिलाड़ियों को किस तरीके का योग करना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे होते हैं इस पर बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: श्रोताओं, अभी आपने जाना प्रीतम कुमार से खेल में योग का महत्व, और 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। योग को अपने जीवन में शामिल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ साथ खेलों से भी जुड़ते रहें। अब रोचक तथ्य में हम जानेंगे फीफा से जुड़ी रोचक बातें। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख न्यूजीलैंड में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन है। ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने सभी फीफा विश्व कप संस्करणों में हिस्सा लिया है। इसके साथ ही इसने सबसे ज्यादा बार यानी कुल 5 बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इस वर्ष इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसकी मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से कर रहे हैं। 1958 के विश्व कप में फ्रांस के जस्ट फोर्टेन ने एक ही टूर्नामेंट में 13 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक अटूट है। ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले ने 1958 में केवल 17 साल और 249 दिन की उम्र में विश्व कप फाइनल में गोल किया था। वे फाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गोल्डन ट्रॉफी असली फीफा विश्व कप ट्रॉफी जो कि सोने से बनी है। इसमें 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन 6.175 किलोग्राम है। इसके निचले हिस्से पर केवल विजेता देशों के नाम लिखे होते हैं। फीफा विश्व कप के फाइनल को दुनिया भर में एक ही समय पर करोड़ों लोग लाइव देखते हैं, जिससे यह ओलंपिक के मुकाबले भी सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एकल खेलों के आयोजनों में से एक है। श्रोताओं, अब खेल प्रश्न उत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए सवालों के सही जवाब। तो बिना देर किए फटाफट हम आपको पिछले अंक के प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं। पहला प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी और कितने मैच खेले जाएंगे। तो आपको बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। दूसरा प्रश्न था महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा। तो इसका सही जवाब है महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला लंदन के प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इन दोनों सवालों के सही जवाब हमारे पास जिन श्रोताओं ने भेजे, आपके नाम हैं आस्तिक कुमारी और रोहित कुमार राजेंद्र नगर पटना से, सरिता रानी है सैदपुर से, अंकित जी ने अपना पता नहीं लिखा, प्रकाश कुमार है गायघाट पटना से। आप सभी का आभार, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब, साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव। और अब आज के 2 प्रश्न ध्यान से सुने, नोट भी कर लें। पहला प्रश्न, फीफा विश्व कप में एक ही टूर्नामेंट में 13 गोल करने का रिकॉर्ड किनके नाम है। सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, फीफा

विश्व कप में एक ही टूर्नामेंट में 13 गोल करने का रिकॉर्ड किनके नाम है? और आज का दूसरा प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप 2026 किनकी अगुवाई में खेल रही है, यानी कि भारतीय टीम की कैप्टन कौन है? सवाल एक बार फिर से, हमारा दूसरा प्रश्न, भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप 2026 किनकी अगुवाई में खेल रही है, यानी भारतीय महिला टीम की कैप्टन कौन है? श्रोताओं, इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब आप हमें एक सप्ताह के अंदर यानी अगले मंगलवार की शाम तक, चाहे तो पत्राचार के पते पर या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम खेल परिक्रमा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी पटना, 800001। हमारा ईमेल पता नोट करें, kp.airpatna@gmail.com। और चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

और इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जुड़े रहें खेलों के साथ। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मन्नान अली के साथ मुझे यानी अल्पी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। परिक्रमा।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अभी आप सुन रहे थे खेल परिक्रमा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे 6:10 पर संस्कृत।

आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंग्ले स्टेडियम लिड्स में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 से।

ये जानकारी थी श्रोताओं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। श्रोताओं, हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या और सुनना पसंद करना चाहते हैं, क्या और हमें सलाह देना चाहते हैं, ये अवश्य आप बताया करें पत्र के माध्यम से। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ज़रूर अपने राय विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ के साथ आप फिल्म संगीत का जो हमारा कार्यक्रम होता है, फ़ोन इन आपके फरमाइश का कार्यक्रम होता है, वहां भी आप अपने पसंद के गीत की फरमाइश कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आगे कार्यक्रम हम आपके लिए फिल्म संगीत का लेकर उपस्थित हो रहे हैं।

ये आकाशवाणी पटना है। आइए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा यानी जया का प्यार भरा नमस्कार।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कहले कि केंद्र सरकार से बिहार के मिले वाला 4,000 करोड़ रुपया के बकाया राशि 30 जून तक उपलब्ध करा दहल जाय। श्री चौधरी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित नदियावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर के संबोधित करे के बेरा ई बात कहले। श्री चौधरी राजधानी पटना में विकसित होखे वाला नया टाउनशिप के नाम पाटलिपुत्र रखे के घोषणा कैले। मुख्यमंत्री शिविर में

0: हुई। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी मौजूद रहले। केंद्रीय कृषि आ किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर स्थित राज्य बीज उत्पादन फार्म में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल भइले। कार्यक्रम के दौरान वो किसान लोग से बात कैले। ए दौरान कहले कि बिहार में कृषि खातिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल अपनावल जाय। बिहार में छोट किसान के संख्या ढेर बा, जौना चलते इहवा ई मॉडल सफल होई। ए कार्यक्रम में शामिल होके के पहले केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उच्च स्तरीय बैठक कैले। बैठक में कृषि, ग्रामीण विकास, विकसित भारत अभियान, पीएम आवास योजना आ केंद्र राज्य समन्वय से जुड़ल मुद्दा पर चर्चा भइल। हमार संवाददाता बतौलने कि श्री चौहान आज सवेरे पटना के गोलघर परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेले, साथ ही एमएलए फ्लैट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल भइले। मद्य निषेध कारा आ परिवहन विभाग में सिपाही या कक्षपाल के नियुक्ति खातिर आज दू गो पाली में परीक्षा भइल। परीक्षा के लेके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कइल गइल रहे। केंद्रीय चयन परिषद के जानकारी के अनुसार पूरा राज्य भर में कुल 544 गो परीक्षा केंद्र बनावल गइल रहे, जहां परीक्षा सम्पन्न भइल। एह बीच अभ्यर्थियों के सुविधा खातिर रेलवे के तरफ से 25 गो विशेष ट्रेन चलावे की व्यवस्था कइल गइल बा। ये ट्रेन पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी आ बेतिया समेत कई गो स्टेशन से चलावल जाय। रेल प्रशासन अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पर पहुंचे आ निर्धारित ट्रेन के उपयोग करे के अपील कइले बा। रेलवे सोशल मीडिया पर वायरल खबर के गलत बतौलस, जेमे पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में बैठल एगो विद्यार्थी के मरे के बात कहल गइल रहे। राज्य में आज दोपहर बाद मौसम बदल गइल बा। राज्य के 11 गो जिला में तेज हवा के साथे बरखा बरसल। बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर सहित 11 गो जिला में बरखा बरसल। उहे राज्य के रोहतास, भभुआ, भोजपुर सहित राज्य के बाकी जिलन में भीषण गर्मी रहे। बरखा बरसला से उत्तर बिहार में गर्मी से राहत मिलल बा। बरखा कम होके के चलते पटना समेत 7 जिला में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल गइल बा। पिछला 24 घंटा में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य के सबसे गर्म जगह रहे, जबकि किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 12.2 मिलीमीटर बरखा दर्ज भइल। मौसम विभाग के अनुसार गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, नालंदा आ शेखपुरा जिला में तेज हवा, बरखा आ वज्रपात के आशंका बा। एकरे अलावा कैमूर, जमुई, समस्तीपुर, दरभंगा, बांका, नवादा आ लखीसराय जिला खातिर ऑरेंज अलर्ट जारी कइल गइल बा। रेलवे गोपालगंज छपरा थावे रेलखंड पर स्थित दिघवा दिभौली स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के 2 मिनट के ठहराव देले बा। ए अवसर पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के दिघवा दिघौली स्टेशन पर पहुंचला पर लोको पायलट के माला पहिरा के सम्मानित कैले। वहां कहले कि यह ट्रेन के रुकला से यात्रियों के काफी सुविधा मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पुणे के हड़पसर रेलवे स्टेशन से पुणे दानापुर साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन के हरी झंडी देखा के रवाना कैले। ये ट्रेन शुरू होखला से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा आवरी आसान हो जाय। ट्रेन हर शनिचर के दोपहर के 3:30 पर पुणे से दानापुर खातिर रवाना हुई आ सोमवार के दानापुर पहुंची। वही तिया दानापुर से हर सोमवार के भोरे 3:30 पुणे खातिर रवाना हुई। एकरे साथे आकाशवाणी पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: सुनिए फिल्म संगीत।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म काजल से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए फिल्म नाइट इन लंदन से, आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है।

ये गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आया सावन झूम के, और ये गीत इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आगे आप सुनेंगे समाचार।

0: किया है एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो पर।
1: भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20। Having registered a comprehensive 64-run win against Pakistan in their tournament opener, India would be now up against the Netherlands, who gave Bangladesh a run for their money. Hello and welcome to First Ball 20. I am Megha, and joining me in studio as my co-host is Suhas Vedam. As experts, we have former cricketers Colonel Bhup Raj Singh, Vaishali Mathur, and sports journalist Soumitra Bose. Welcome to the show.

0: चेंज किया है वो है मीडियम पेसर का.
1: एंड
0: अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पे पहले ही इस पिच के ऊपर वोमेन्स टी ट्वेंटी ब्लास्ट 2026 में अभी हुआ है रिसेंटली, एंड इसमें 26 स्पिनर्स पे बोल्ड विकेट्स मिली हैं एंड 17 फास्ट बॉलर्स को मिली है. तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खिलाना ज़्यादा बेटर था, बट यहाँ पे चेंज हुआ है तो बेटर हमारी इंडियन टीम के लिए बहुत बेटर है ये, और हमारी शेफाली वर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चांस है क्योंकि वो मीडियम पेसर को जैसे हिट करती है हम सब बखूबी जानते हैं. एंड उसके बाद जब हमारी जेनिमा आती है तो वो किसी को टिकने नहीं देती है बॉलर को, और वहाँ उसके बाद जो बारी संभालती हमारी हरमनप्रीत कौर, तो वहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए भारतीय टीम की क्योंकि ऊपर के ही बैटर आज इस लाइनअप को ख़त्म करके आ सकते हैं. और इस पिच पे खासियत और है, यहाँ का जो स्कोर अगर हम देखें तो 150 तक गया है.
1: राइट, बट वुड दैट बी इनफ इज अ बिगर क्वेश्चन नाउ दैट इंडिया बैटिंग फर्स्ट. कर्नल भूपराज जी, India has also made a change, but that's in the bowling department. Arundhati Reddy is giving way to Nandini Sharma to be in the side. The young Nandini Sharma getting World Cup experience would be absolutely magnificent to watch. Having said that, India batting first. Do you also have a number in mind looking at that surface?
2: Actually, the last match we won very easily. But there were two concerns, you know. The first, as far as the batting is concerned, Shefali didn't score runs, nor did Jemima.
1: Right.
2: So it is good that we are batting first. At least both of them will get a good hit and get some confidence back before the next match against South Africa,
1: which is the bigger one.
2: Yeah, that is the main, you know, sort of knockout match. Whosoever wins that match goes into the semi-final. That's the way things stand now. Now, as far as the change in the bowling is concerned, a second concern in the last match was that the fast bowlers did not bowl well. So there is a change in the fast bowlers, but I would have expected three fast bowlers to play in this match, keeping the wicket in mind.
3: Absolutely. और इस बीच हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़ सकते हैं. हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084-2342-1085. और इसके साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं. नमस्कार.
4: नमस्कार, मैं आपका रेगुलर श्रोता लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ. अब पहले मैच में तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा, बात सही है, लेकिन हमारे जो पेस बॉलिंग का मसला है उसमें थोड़ा हम कहीं से भी कमजोर लग रहे बाकी टीमों से. और शेफाली वर्मा और जिमिमा राजपूत का जो फॉर्म है उसमें थोड़ी चिंताजनक बात है. तो इसके लिए क्या आविष्कार कार्यवाही इन दोनों पेस बॉलरों के लिए कुछ करेंगे, इसके ऊपर मेरा सवाल है.
3: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए. एक तो तब्दीली हो चुकी है, नंदिनी आई है, WPL में काफी प्रभावित किया था. उसके अलावा शेफाली का ये जो साल रहा है, पिछले साल बहुत कंसिस्टेंट थी T20s में, लेकिन इस साल
5: काफ़ी रन्स बना चुकी है, तो एंड शी इज़ गॉट क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड उनका जो है. क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक सीजन रन नहीं किया कि उसको बिठा दो, और ऐसा नहीं होता. सो कंसिस्टेंसी द सिलेक्टर्स हैव शोन कंसिस्टेंसी, टीम मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंसी दिखाई, एंड देर आर सो मेनी मैचेस और क्रिकेटर्स नीड टू बी बैक्ड, स्पेशली समबडी लाइक शेफाली. दैट्स व्हाई द टॉस इज इम्पॉर्टेंट. इंडिया गोइंग टू बैट, बिग टेस्ट, बट अगेन एज हरमनप्रीत सेड, यू हैव टू स्टिक टू योर विकेट एंड प्ले टू द कंडीशंस.
1: Absolutely. And coming back to Vaishali here, now Nandini Sharma will be seen in the ball in hand a little later. You mentioned 150, and you also mentioned that the spinners are the ones who are doing the talking here. So gone are the days where if you talk about England, it's the pacers who raise their collar up?
0: Maybe, but I can say ki यहाँ पे सबसे मेन है दोनों टीमें आज पहला मुकाबला खेल रही है T20 का, एंड इस मुकाबले को हम सेकंड मैच की तरह नहीं, एक जीत के मुकाबले की तरफ देखते हुए नज़र देख सकते हैं क्योंकि हम दोनों टीमें एक के प्लेयर्स को नहीं जानती हैं. ODIs में खेला है उन्होंने, बट ये मुकाबला बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड जितना स्कोर हमारे बैटर और पार्टनरशिप बनेगी वो हमारे आगे आने वाले मैच के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो साउथ अफ्रीका टीम के साथ आने वाला है. तो यहाँ की पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, शेफाली वर्मा का बल्ला चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड जेमिमा का भी बल्ला चलना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अभी स्मृति का चल रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप अगर बनती है तो ही रन आगे हमारे बढ़ते हैं और स्कोरबोर्ड पर दिखते हैं. तो ये अगर नंदिनी शर्मा की बात करें तो नंदिनी एक बहुत अच्छा चांस मिला है उनको खेलने का, और रेड्डी की जगह पे उनकी अगर उनकी लास्ट मैच की अगर फील्डिंग की बात करें और बॉलिंग की बात करें तो वो उतनी खास रही नहीं एज

0: कंपेयर टू आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड नंदिनी उस जगह को, उस स्थान को बखूबी निभाएंगी. और आज जिस तरह की पिच है तो देखा जाता है कि स्किट भी होता है इस बॉल, इस पिच पे, तो वो चीज़ देखने को भी मिल सकती है नंदिनी शर्मा से. एंड उसके साथ हमारी जो स्पिनर्स है, वो लाइनअप जो है हमारे स्पिनर्स का, वो काफ़ी अच्छा है. बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है, तो एक बेनिफिट है हमारी इंडियन टीम के लिए.
1: शेफाली ने पिछले मुकाबले में शुरुआत एक छक्के के साथ की थी, 3 डॉट बॉल खेला और उसके बाद अपना विकेट गवा दिया. हरमनप्रीत ने टॉस पे कहा था कि विकेट ऐसा है कि वक्त दे सकते हैं, विकेट को समझ के बड़े शॉट्स फिर खेलने की कोशिश कर सकते हैं. क्या शेफाली की तरफ से वो अप्रोच आप देखते हैं?
2: देखिए, शेफाली की गेम ऐसी है कि वो हर बॉल पे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगर टिक के खेले तो शी कैन गेट अ वेरी बिग स्कोर टुडे.
1: जी बिल्कुल. और इस बीच हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो जल्दी ही बात करते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट स्मृति मानधना. इनफैक्ट इन द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट सौमित्रो, स्मृति लुक लाइक स्ट्रगलिंग, बट स्मृति इज नेवर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बिकॉज वेन एवर इट्स बिग गेम्स, स्मृति ब्रिंग्स अ ए गेम.
3: 100 most influential sportspersons of the world, only 2 cricketers to find their place in Time magazine, Smriti Mandana can never go wrong, right? Abhi abhi RCB ko usne tournament champion kiya, ek bar nahi, do bar kiya, 17 centuries, you never question her credibility, right? Pedigree, credibility, and even last match she got runs, right? She's not that she's out of form. Yeah, she's a perfect batsman to take the innings forward. और देखिए, शेफाली वर्मा को तो हम बात कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत है उनको रन बनाना, कंडीशंस को फेस करना. जैसे कर्नल सेड, यू कांट हिट सिक्स इन एवरी बॉल, यू हैव टू प्ले द बॉल टू इट्स मेरिट. और देखिए, आई थिंक द डच हैव डन द राइट थिंग बाई चूजिंग एन एक्स्ट्रा पेसर. सो इट इज, दे आर गोइंग टू बी टेस्टेड एंड इट्स गुड फॉर अस, गुड फॉर इंडिया, बिकॉज बिफोर यू नीड दिस काइंड ऑफ टेस्ट, you need this kind of competition to play the bigger matches.
4: Indeed. And Mr. Bhupendra, Colonel Bhupendra, we were mentioning that Yastika is also in now. The fact that Yastika is in as a batter, even though Richa might be seen with the gloves,

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में। आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हाँ, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी, स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं, राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है, उनकी तरफ से। उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके

0: ये रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी, हम हाँ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में, बताइए।
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
0: जानकारियों का अभाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी।
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
0: जी।
1: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
0: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
0: तो
1: नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां है सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने को मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है।
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी।

0: जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी।
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर है, तो हमने पहले ही बताया था कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: और आगे भी कीर्तिमान रहेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा
1: हाँ।
0: उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टी

0: नेशनल में जाना चाहता है मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा कहीं भी। नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी। इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है।
1: हाँ।
0: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया, ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना।
1: हाँ।
0: जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: अच्छा,
0: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइफ को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
1: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं, 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।

ये आकाशवाणी पटना है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक।

0: प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आम आम आम आ गए हैं बिहार के आम, हर डाल से आए मिठास भरा पैगाम, सुनहरा रंग मधुर महक मन को भाए अपार, जरदालू मालदा का मेला सजा हमारा बिहार, दूधिया गुलाब खास कृष्ण भोग है स्वाद, एक से बढ़कर एक किस्म रहेगी चिरयाद।
2: पटना में 3 दिवसीय भव्य आयोजन 19, 20, 21 जून, सादर है आमंत्रण।
1: अब खेती हुई स्मार्ट, देखे तकनीक का कमाल, QR और AI से सुलझे हर सवाल, ड्रोन ऐप और विज्ञान आम का है नया अंदाज, परंपरा में है जड़ें गहरी और डिजिटल का आगाज,
2: बच्चों हेतु चित्रकला और क्विज की हर माह, आम खाइए इनाम पाइए, है यह
1: परिवार सहित पधारिए, मित्रों को भी लाइए, प्रवेश है पूर्णतः निशुल्क, उत्सव का आनंद उठाइए, हर आम की है विशेष पहचान, आम महोत्सव बढ़ाए बिहार की शान, विशेष जानकारी हेतु जाए horticulture.bihar.gov.in पर, उद्यान निदेशालय कृषि विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन का हर कोना झंकृत हो उठता है जिनकी उंगलियों के स्पर्श से
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: वो आप कह सकते हैं कि मैंने
5: जमाने से कहानी है सुनाई है। आकाशवाणी
2: श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
5: कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
2: पंडित रोनू मजूमदार,
5: संगीत
2: सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, संगीत और लोक संगीत में वासुकी की भूमिका। पहली जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
6: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मामुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध हुई हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

0: कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने
1: जय माना कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है।
0: योजना 2026 को
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर की आवाज़ें, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।
0: इस योजना के तहत
2: पायलिया
0: राजगीर, वाल्मीकि नगर और पटना के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर

0: राज्य सरकार से देंगे।
1: इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोइलवर से भागलपुर तक 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 किलोमीटर लंबे गंगा पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। श्री चौधरी ने राजधानी पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र करने की भी घोषणा की,
0: क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र के नाम से होना चाहिए। लोग कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्र था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्र रखने का काम किया है साहब।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना जिले के नौबतपुर स्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर किसान कृष्ण कुमार ने केंद्र सरकार की किसानों से सीधे संवाद के पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: जब तक किसानों के बीच जाकर के किसान की बात नहीं सुनेंगे कोई भी मंत्री, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ये पहल बहुत बहुत बहुत बढ़िया से सुनी, लेकिन हम किसानों की बात को सुना और हम भी जो भी बातें थी किसानों से संबंधित उस पर उन्होंने सहमति भी जताया।
1: एक अन्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि बिहार में कृषि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बनाई जाएगी। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह मॉडल यहां सफल रहेगा।
3: बिहार में ज्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं। छोटे जमीन के टुकड़े में कैसे फायदे की खेती करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बिहार में हम अपनाएंगे। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ, कौन सी उपज, लेकिन उसके साथ साथ फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती के साथ साथ हम बाकी और क्या गतिविधियाँ खेत पर कर सकते हैं ताकि छोटे किसान की आजीविका चल सके, उस पर भी विस्तार से बातचीत।
1: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्री चौहान

0: से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में आदर्श केंद्र की स्थापना का आग्रह किया। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने श्री चौहान से बक्सर और लखीसराय में टमाटर तथा प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह किया। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए थे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जा रही हैं। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। रेलवे ने मीडिया में प्रसारित उन खबरों को निराधार बताया है जिनमें पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में सवार एक छात्र की मौत की बात कही गई है। भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति किसी स्वास्थ्य समस्या या थकान से ग्रस्त प्रतीत हो रहा है। रेलवे के अनुसार सभी रिकॉर्ड की जांच कर ली गई है और पाटलिपुत्र स्टेशन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से 1 जून से अब तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। बारिश की कमी के कारण पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 41.5, डेहरी का 41, गया जी का 40.7, शेखपुरा का 40.6, औरंगाबाद का 40.5, पटना का 40.4 और छपरा का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान अररिया, कैमूर, रोहतास, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और मधेपुरा जिले के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 13 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस संबंध में आज पटना में बैठक हुई। बैठक में 5 विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा 13 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैदराबाद के संस्थापक सदस्य RS जुलानिया ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाविद्यालयों में 7 विषय चुने गए हैं।
1: बिहार राज्य ने 13 कॉलेजेस चुने हैं जहां 7 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाए जाएं। एक बैच में 40

0: से 60 बच्चे हो सकते हैं और 2 साल, क्योंकि यहाँ 4 साल का प्रोग्राम है, इसलिए 2.5 से 3 साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी और आखिर का मैक्सिमम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल डेवलप करा करके डाल दिया।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया को खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खेल विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने गया जिले तथा मगध प्रमंडल में खेल अवसंरचना के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी ली। इस बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिवहर जिले के पुलिस लाइन में आज प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 208 आरक्षी सिपाही बिहार पुलिस में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इस दौरान तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुशवाहा, जिलाधिकारी प्रतिभा रानी और पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। साथ ही सभी आरक्षियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के मसूदानपुर कमराय में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी विभोर कुमार उर्फ अंकुर कुमार को आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। और मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

0: This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था।

0: और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जानकारी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
1: पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। फुलवारी शरीफ प्रखंड के नदियामा में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा आम लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर जनता की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: इस जन कल्याण शिविर के माध्यम से साथियों, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है इसका निर्माण आप जरूर कराएं, जिनका भी छूट गया हो। वैसे 90% से अधिक हमारे जितने परिवार हैं उनके एक प्रमुख साथी का हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम किया है। दिव्यांग कल्याण के लिए योजना चल रही है, उसके भी आवेदन आप दे सकते हैं।
1: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने किसानों से संवाद किया। इस दौरान कृषि भूमि संरक्षण, टिकाऊ खेती और किसानों के आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। असम के जोरहाट एयरबेस में हुए इन 32 विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के 2 वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर बिहटा एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की अंतिम घर वापसी पर पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल देखा गया। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार के मंत्रियों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। वहीं विक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के 6ठे चरण में बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राएं पंजाब के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण के लिए रवाना हुए। IIT पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में राज्य सरकार के मंत्री संजय कुमार ने युवाओं को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को देश की विविध संस्कृति, इतिहास और विकास की प्रक्रिया को समझने का अवसर प्रदान करेगा।
3: यहाँ आने में गर्व महसूस हो रहा है। हमारे बिहार के कई अन्य जिलों के 50 छात्र छात्राएं चयनित होकर पंजाब में जा रहे हैं। हमारे बिहार की संस्कृति को, पंजाब की संस्कृति को एकजुट करने की भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है। एक राज्य से दूसरे राज्य के छात्र आपस में अन्य राज्यों में जाकर वहाँ अपने राज्यों का साझा करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बच्चे आगे बढ़े।
1: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने हाल ही में बेहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो का दौरा किया। उन्होंने वहां खाद उत्पादों की सुरक्षित पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और आधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि मखाना, लीची और जर्दालू आम जैसे बिहार के प्रसिद्ध उत्पादों की वैज्ञानिक पैकेजिंग से किसानों को लाभ मिल रहा है तथा राज्य के निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में एक एक उच्च माध्यमिक

0: विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं, समृद्ध पुस्तकालयों और डिजिटल शिक्षण संस्थानों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इधर पटना में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है। जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 20 जून तक स्थगित कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के संक में जानेंगे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड के बारे में। होगी एक रिपोर्ट PM सुरेखर मुफ्त बिजली योजना पर। और केंद्र सरकार की पहल एक जिला एक उत्पाद पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है, जो जनता के विश्वास का प्रमाण है। श्री चौधरी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पटना में आयोजित मीडिया संवाद को संबोधित कर रहे थे।
4: 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों, और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूँ। इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में, तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों, इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ।
2: श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और राज्य को विभिन्न मदों में 12,90,000 करोड़ रुपए की सहायता और आवंटन मिला। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने एक वर्ष में 5,00,000 करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में लगातार प्रगति हो रही है।
4: बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब NDA सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5,00,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम, इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर रहे हैं।
2: श्री चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करना भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना

0: भी पूरा हुआ।
1: 1950 में कहा कि 370 हटाएंगे, नहीं चलेगा इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान। धीरे धीरे सबको समाप्त किया, पहले दो प्रधान समाप्त हुए, और जब इस देश के लोगों ने इतनी ताकत दी कि 370 को उखाड़कर 35A को उखाड़कर एक कचरे के ढेर में फेंक दिया, ऐसी ताकत इस देश की जनता ने दिया, जब जनता ने आशीर्वाद दिया, न्यायालय ने साथ दिया, गर्व से कह सकता हूँ कि इस देश में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई और इसको भी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। साथियों,
0: सूरज की किरणें अब सिर्फ उजाला ही नहीं बल्कि बचत और आत्मनिर्भरता का संदेश भी दे रही है। प्रधानमंत्री सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना के तहत लाखों परिवार अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन कर रहे हैं। इससे बिजली बिल में कमी आने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बिजली कभी एक जरूरत तो कभी हर महीने की चिंता, लेकिन अब ये तस्वीर तेजी से बदल रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत के ऊर्जा भविष्य को नई दिशा दे रही है। आज करीब 35 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब घर सिर्फ बिजली के उपभोक्ता नहीं है बल्कि जरूरत से ज्यादा बिजली बनाकर आय का जरिया भी बन रहे हैं। सरकार अब तक करीब 19,480 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे लोगों तक पहुंचा चुकी है। इसका असर साफ दिख रहा है, बिजली के बिल घट रहे हैं और कई घरों में बिल लगभग शून्य हो चुका है। एक साधारण सी छत अब ऊर्जा का नया केंद्र बन रही है और यही बदलाव भारत को ले जा रहा है एक ऐसे भविष्य की ओर जहां ऊर्जा सस्ती भी है, भरोसेमंद भी और आत्मनिर्भर भी। पीएम सूर्य घर, अब हर घर की अपनी बिजली।
0: मिट्टी की खुशबू कारीगरों के हुनर और परंपराओं की विरासत को अब नई पहचान मिल रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले की विशेषता को ब्रांड बनाकर बाजार से जोड़ा जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है।
3: भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद ODUP पहल का उद्देश्य देश के हर जिले को एक खास पहचान देना है। इसके तहत प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को चुना जाता है और उसे बढ़ावा दिया जाता है। यह पहल पारंपरिक उत्पादों को स्थानीय बाजारों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और खनिज जैसे क्षेत्रों के 1,200 से अधिक जिला उत्पाद DPIIT के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हैं। इससे जिलों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलता है और उन्हें बेहतर बाजार मिल पाता है। यह पहल डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब DEH और जेम ODOP बाजार जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ी है। इससे कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए बड़े बाजार तक पहुंच मिलती है। रोजगार बढ़ाकर, पारंपरिक हुनर को बचाकर और क्षेत्रों के बीच फर्क कम करके ODOP पहल वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और भारत की निर्यात क्षमता को मजबूत बनाती है।
0: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन निधि श्री, वाचन अभिषेक दास, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति डॉक्टर सविता पारीक।
4: अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
5: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
6: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
4: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
2: तो क्या सभी मेज के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
3: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
2: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
3: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
2: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
3: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
2: बाय बाय। बैरा?
4: यस मैडम, कमिंग। क्या खाइएगा?
2: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
4: ओके मैडम।
2: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए।

0: प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप सलाद।
1: हेलो सर।
2: यस मैडम।
0: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
2: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है। मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
2: थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं। मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
0: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
2: ओह, वंडरफुल वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके।
0: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
2: यस।
0: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें। बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
2: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
0: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मेनू भिजवा दूंगी और शाम के मेनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
2: ठीक है।
0: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
2: मेज 12।
0: तो 12 यह, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15।

0: तीनों का ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
0: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुटा रहता है। काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन।

0: आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वाल्टर, वाल्टर।
1: सारा, अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
0: अब इस तरह रोने से क्या होगा वाल्टर? हिम्मत मत हारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
1: क्या सोचा था? क्या हो गया सारा? भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
0: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वाल्टर, उनसे क्या घबराना? हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
1: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे? सारी पूंजी, सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा, एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
0: देखो वाल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है? गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
1: कहो।
0: देखो वाल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ। वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूंगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
1: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुमसे अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता।
0: वाल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो। सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
1: हा?
0: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
1: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
0: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वाल्टर। और एक बात और भी है वाल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
1: सारा।
0: वाल्टर। आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वाल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा वाल्टर।

0: आपने बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए, अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ, तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू पनीर। ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो तुम्हारी मनपसंद सब्जी नहीं, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वॉल्टर कल जरूर आ जाना। वॉल्टर तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वॉल्टर कल जरूर आना, जरूर आना, जरूर आना।
1: मेम साहब आपका खाना
0: रख दो यहाँ। हाँ आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
1: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
0: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
1: ओके, जैसा आप कहोगे।
0: ओह वॉल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वॉल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वॉल्टर कौन है?
2: सारा।
0: वॉल्टर, ओ वॉल्टर, तुम सच्ची वॉल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
2: यस मैडम।
0: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
2: ओके मैडम।
3: सारा।
0: वॉल्टर तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
3: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
3: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
3: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
0: हाँ मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
3: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
0: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
3: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
0: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वॉल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
4: मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर।

0: अर्ध सत्य की रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार मयूर पुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश दिल्ली 6 फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडबरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

0: कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सीलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्स ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 213,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और

0: आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी

0: बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। Headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of

0: the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the temple with River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the corridor is providing ease of access to pilgrims.
1: Kashi mein Modi ji ne bahut kaam kiya hai.
2: Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
1: Darshan karne mein kaafi aasani hoti hai.
0: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
3: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that the conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स, यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। पेरिस में विवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मस्नूई जहानत और तकनीकी ताउन के फरोग के अज़्म का इआदा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलाक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबराह इजलास 2026 के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक अहम दोतरफा मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मगरबी एशिया में अमन के कयाम की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत हमेशा समंदरी रास्तों पर जहाजों की आमदोरफ्त की आज़ादी की अहमियत पर जोर देता रहा है और तमाम मुल्कों को इसके तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

0: वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में बहरी तिजारत के शोबे से वाबस्ता लाखों भारतीय मल्लाह अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी सलामती भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मस्नूई जहानत AI के महफूज तेज रफ्तार और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मौजू पर मुनक्दा वर्किंग लंच में शिरकत की। इस इजलास में G7 के रुकन मुल्कों, शराकत दार ममालिक और मस्नूई जहानत की मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शरीक हुए, जहां डिजिटल इख्तरा के मुस्तकबिल पर ख्यालात का तबादला किया गया। वजीर आजम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ा भी शामिल था। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में नई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस सिलसिले में चांसलर मर्स के भारत के कामयाब दौरे और रवां साल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के मुजाकरात की तकमील का भी जिक्र किया गया। चांसलर मर्स ने वजीर आजम मोदी को इस साल जर्मनी में मुनक्द होने वाली 8वीं भारत जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत में शिरकत की दावत दी। वजीर आजम मोदी ने सरबराह इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो द कोस्टा के साथ भी मीटिंग की। पेरिस में जारी विवाटेक 2026 में भारतीय पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर भारत और फ्रांस ने इख्तराम मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तावुन के अपने अहद को दोहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और फ्रांस की मस्नूई जहानत और डिजिटल उमूर से मुतालिक वजीर एनेली हेनाम्प ने दोनों ममालिक के माबैन कलीदी शराकतदारी की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इख्तराकारों और स्टार्टअप से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मीखों के जरिए भारत फ्रांस इख्तरा के साल 2026 के ऐलान के जरिए भारत और फ्रांस की शराकतदारी मजीद मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मस्नूई जहानत AI के दौर में भारत को कई नुमाया फवायद हासिल हैं, जिनमें नौजवान आबादी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी स्टेम के माहिरीन की बड़ी तादाद, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी शामिल हैं। उन्होंने भारत फ्रांस इख्तरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिल जिक्र है कि विवाटेक 2026 में कायम इंडिया पवेलियन कौमी सतह के सबसे बड़े पवेलियन में शुमार होता है, जहां भारत के तेजी से फरोग पाते हुए स्टार्टअप्स और इख्तराई माहौलियाती निजाम की भरपूर नुमाइश की जा रही है। पेरिस से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय बिरादरी के अफराद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके खैर मकदम के लिए तैयारियां जारी हैं। कल सुबह वजीर आजम मोदी सरकर्दा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंगें करेंगे और तवक्को है कि यह तबादला ख्याल दोपहर तक जारी रहेगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी विवाटेक समिट में शिरकत करेंगे, जो कि यूरोप की टेक्नोलॉजी और इख्तराअ से मुतालिक एक अहम मीटिंग है। तवक्को है कि जनाब मोदी इस मौके पर खिताब भी करेंगे। शाम में वजीर आजम एक कम्युनिटी तकरीब में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के साथ तबादला ख्याल करेंगे। भारतीय रेलवे ने गुजरात, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश में रेलवे की गुंजाइश बढ़ाने, माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने, हिफाजती इंतजाम को मजबूत करने और शहरी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपये से जायद मालियत के मुतादिद बुनियादी ढांचा जाती मंसूबों की मंजूरी दी है। इन मंसूबों में गुजरात के एक अहम रेलवे सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने, महाराष्ट्र में मालगाड़ियों के लिए एक नई कॉर्ड लाइन तामीर करने, मशरकी रेलवे में सिग्नलिंग निजाम को जदीद बनाने और इंदौर में एक अहम रोड ओवर ब्रिज की असर नौ तामीर शामिल है। इन इकदाम से

0: रेलवे ऑपरेशंस की कारकर्दगी में इजाफा, मसरूफ रेलवे राहदारियों पर दबाव में कमी, मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलने की तवक्को है। कच्छ के खित्ते में रेलवे राबते को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मगरबी रेलवे के 49 किलोमीटर तवील आदिपुर भुज सेक्शन की दोहरी लाइन बिछाने के मंसूबे को तकरीबन 493 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से इलाके में मुसाफिरों और माल बर्दारी दोनों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम होंगी। इस तरह भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र में 3.7 किलोमीटर तवील सोमटाने चिखली कोड लाइन की तामीर की मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जदीदकारी के एक अहम इकदाम के तहत मशरकी रेलवे में 450 करोड़ रुपए के सिग्नलिंग अपग्रेडेशन मंसूबे को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुणे रेलवे स्टेशन की बड़े पैमाने पर तौसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा 6 प्लेटफार्मों के साथ मजीद 6 नए प्लेटफार्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज़, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदाम किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीम उशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगु करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमदोरफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज़ के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.0 के दौरान मस्कुरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार

0: नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: आप सुन रहे थे अभी प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। और अब आज के फनकार,
3: बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
4: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। ए देवदास, तुम कहाँ चले, घबराने की क्या बात है, बैठ बैठ बैठ जाओ। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।

0: Good idea.
1: Of course.
0: Ticket, please. Ticket, please.
2: Pass.
0: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: Of course, of course.
2: मैंने तुम्हें कहीं देखा है. शर्मा जी के घर.
0: कौन शर्मा?
2: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS.
0: आपका मतलब वर्मा जी से है?
2: हाँ, वर्मा जी. वर्मा शर्मा में क्या फर्क है? दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं. क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
0: 125 रुपए.
2: 125 रुपए. और DNS अलाउंस और भत्ता?
0: 50 रुपए.
2: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं. और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो. जुल्म है ये, सरासर जुल्म है. मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा. क्या नाम है तुम्हारा?
0: रामप्रसाद.
2: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा. अब तुम जा सकते हो.
0: थैंक यू सर, थैंक यू.
3: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई. इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना.

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनी हुआ हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है,
2: पहचाने भी नहीं जाते,
1: क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: मैं कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
2: ये भी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पर पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिलाई?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं,
2: रघुबर के गुण गावे रे।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आजी इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
2: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
2: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं, जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना।
2: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। क्या हुआ?
3: सॉरी।
2: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
2: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिये की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जा के देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती का ये पटना केंद्र एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। कार्यक्रम छाया गीत थोड़ी ही देर में। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।
1: वीको वज्रदंती
3: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना।

ताज़ा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

0: ये प्यार पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना सवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।
1: खोया खोया।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों, अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाए।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम छाया गीत। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीक वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान, तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।
3: वीको वज्रदंती।
4: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र पटना है। एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर इस समय हमारे स्टूडियो घर में रात्रि के 11 बजे हैं। श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर से। फिल्म का नाम है आरजू। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म संगीत का अगला गाना आपको हम सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म से। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। एक बार फिर से संगीत शंकर जयकिशन का है और शब्द रचना है हसरत जयपुरी के।

अभी आपने सुना अनाड़ी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में। इस गाने के साथ अब आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र पटना से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये रात्रिकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे विविध भारती के विविध रंगीन कार्यक्रमों के साथ। तब तक लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।